तो ये है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। हमें भगवद गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8
5: FM। सुंदर स्त्री हीरा है लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है शादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।
6: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
3: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन, आपके साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से। इसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल।

0: बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ, और हमेशा कहता हूँ कि सुरक्षित चले, सुरक्षित घर पहुंचे, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कहीं ना कहीं मैंने आज आपको इशारा कर दिया कि आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। विषय होगा रोड सेफ्टी, और जब रोड सेफ्टी का हम जिक्र करते हैं तो जिक्र होता है एक एक्सपर्ट का, और जिक्र होता है जो इस क्षेत्र में महारत हासिल रखते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो कि हरफन मौला हैं। आप हिंदुस्तान टाइम्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और रोड सेफ्टी के लिए बहुत बहुत बहुत काम किया है। खुश मिजाज इंसान है, हरफन मौला है, आप हैं अंकुर शरण जी। तो अंकुर जी, सुरुशादा 90.8 एफएम पर आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम।
1: थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड अ ग्रेट ऑनर।
0: थैंक यू सर, वेलकम। कैसा लग रहा है शारदा विश्वविद्यालय के इस आंगन में आकर आपको?
1: बहुत खूबसूरत सफर रहा। जब मैं एंटर किया इस कैंपस में, लिटरली दिल खुश हो गया, क्योंकि जिस तरीके से ये यहाँ का वातावरण आप लोगों ने बनाया है, स्पेशली जो ग्रीन एनवायरमेंट आप लोगों ने जो क्रिएट किया है, दिस इज रियली अमेजिंग एंड ऑसम। एज अ जस्ट अंकुर, तो भाई मैं तो पर्यावरण से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, और मैं चाहूंगा कि पर्यावरण से हर कोई जुड़े और कहीं ना कहीं अपना योगदान देता रहे।
0: माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कम शब्दों में आपने रख दी, और मैं इस बात को आगे लेकर जाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि एक पौधा अपने माँ के नाम जरूर लगाइए, इस धरा को हरा भरा करिए। और जब इस तरीके से इस आंगन का जिक्र हो रहा है, इस प्रांगण का जिक्र हो रहा है, तो जिक्र करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि हमारी जो टैग लाइन है सर, टैग लाइन ये है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर, और यही वजह कि यहाँ बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग होती ही रहती है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन सुरशादा 90.8 एफएम विद मी मेरानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और आज स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान है। हिंदुस्तान टाइम्स में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहां पर आप सर्विस कर रहे हैं और सर्विस कर रहे हैं जन सेवा यानी कि रोड सेफ्टी पर बहुत धरातल पर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूं। आप हैं अंकुश शरण जी। और अंकुश शरण जी, एक लाइन है, बड़ी खूबसूरत लाइन है कि ए भाई जरा देख के चलो। ये लाइन है कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी पर सटीक बैठती हैं। क्या कहना चाहेंगे रोड सेफ्टी के बारे में?
1: देखिए, रोड सेफ्टी एक अभिन्न अंग है हम सबका। हम चाहे जहां से भी आते हैं, जिस समाज को भी हम बिलोंग करते हैं, हम चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे हम बुजुर्ग हैं, कुछ भी है, आप सब सड़क को यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि सड़क पे चलते हुए हमें हमेशा ध्यान में तो रहना चाहिए, साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि रोड सेफ्टी की प्राथमिकता को हमें नजरअंदाज कभी भी नहीं करना चाहिए। चाहे हम स्कूटर चला रहे हों, टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, हम लोग देखते हैं कि लापरवाही कि हम लोग ने जिस एटीट्यूड में हम लोग रहते हैं, तो उसी एटीट्यूड के साथ अगर हम रोड पे चलते हैं तो डेफिनेटली उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है
0: जी।
1: तो थ्रू रोड सेफ्टी कैंपेन के द्वारा हम लोग बहुत सारी ऐसी जानकारियां लोगों तक साझा कर रहे हैं, साथ में वॉलंटियर्स नेटवर्क को पैन इंडिया लेवल पे हम लोग रोड सेफ्टी स्क्वाड की मदद से कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम वॉलंटियर्स हमारे बने, क्योंकि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। फिर अपने शब्दों को दोहराते हुए यही कहूंगा कि कम शब्दों में बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, बारंबार कहता हूं कि सुरक्षित चलें, सुरक्षित घर पहुंचें, सुरक्षित ऑफिस पहुंचें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जरा सी भी स्पीड आपकी ओवर स्पीड होती है तो कहते हैं ना कि अपने पर्स में से अपनी फैमिली का फोटो निकाल लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं एक अलार्म आपके दिमाग में घंटी बजेगी, नहीं यार मुझे ओवर स्पीड में नहीं चलना है। क्योंकि ओवर स्पीड में चलेंगे तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी। और जब आप अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे तो आपको याद रहेगा कि नहीं, सुरक्षित चलना है, सुरक्षित घर या सुरक्षित ऑफिस पहुंचना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। यह है ग्रेटर नोएडा का आपका अपना रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते समुदाय की बातें करते हैं, ज्ञान विज्ञान पढ़ने पढ़ाने जिंदगी को जीने की बातें करते हैं और बातें करते हैं रोड सेफ्टी के बारे में। ये एक ऐसा विषय जिसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। एक छोटी सी गलती की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, आपका अंग भंग हो जाता है या कभी कभी आपकी मृत्यु तक हो जाती है। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हिंदुस्तान टाइम्स से आप हैं अंकुर शरण जी। तो अंकुर जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: सर। अभी मैंने जिक्र किया कि अंग भंग हो जाता है, कभी कभी मृत्यु तक हो जाती है, तो ऑन ग्राउंड में अगर बात करूं आपसे धरातल पर मैं जानूं कि किस तरीके के हालातों को आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से लोगों को ध्यान रखना चाहिए।
1: देखिए हम लोगों ने रोड सेफ्टी के ऊपर बहुत काम किया है और शासन प्रशासन के साथ मिलकर जो भी हो सकता है हम लोग उसकी अवेयरनेस कैंपेन्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि उसे धरातल पर लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम लोग को चाहिए कि जो भी बातें हम लोग को बताई जाती है समझाई जाती है उन्हें हमें अपने दैनिक जीवन में उतारना है। वो सिर्फ लिखित बातें या कोरी बातें नहीं है, उसे हम जितना ज़्यादा गंभीरता से लेंगे अपनी लाइफ को हम बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं उसका तो इलाज है लेकिन हादसों का कोई इलाज नहीं है। उनका सिर्फ बचाव है कि जब हम सतर्क रहेंगे तो अपने आप को बचाएंगे, क्योंकि हम लोग ने देखा है कि जिस समय कोई भी एक्सीडेंट होता है उस समय जो प्राइम टाइम जो होता है हम लोग का राइट गोल्डन आवर, उसके अंदर क्या हम
0: मॉर्निंग और इवनिंग टाइम
1: नहीं जो भी एक्सीडेंट हुआ उसके एक घंटे के अंदर,
0: अच्छा उस प्राइम टाइम की बात करें,
1: यस ओके। तो जो गोल्डन आवर होता है वो बहुत जरूरी होता है, लेकिन अब हम लोग क्या होते हैं कि भागा दौड़ी में इतने ज्यादा हो चुके हैं हमें ध्यान ही नहीं रहता। तो आज चाहे हम किसी के ऊपर भी दोषारोपण करें सबसे पहले हमें अपने ऊपर देखना है, अपनी स्पीड पे लगाम लगानी है, हमें समय पर पाबंद होके काम करना है। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि हम मूक बधिर होके ना चले। मैं हमेशा से एक रोड सेफ्टी स्क्वाड बनाने से पहले मैं खुद एक वॉलंटियर रहा काफी समय तक। जब भी कभी मैं देखता रोड पर कोई एक्सीडेंट हुआ तो जाने अनजाने मुझे अगर मैं नहीं भी जानता हूं उनको तब भी मैं अपनी गाड़ी से साइड लगाकर देखता, अगर गंभीर है तो इमिडिएटली फोन कर दिया। अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर है तो हम लोग के पास एक अपनी टीम है, हम लोगों ने उस पर फोन करके ट्रैफिक के हम लोगों ने अपने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं नोएडा का फरीदाबाद का गुड़गांव का एनसीआर लेवल का कि जिसमें डीसीपी ट्रैफिक से लेकर हर वो आला अधिकारी जो भी ट्रैफिक से जुड़ा है वो उसके अंदर लोग जुड़े हुए हैं ताकि हम लोग स्पीड में तुरंत कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट होता है या कहीं ऐसा जाम लग जाता है जो कि अननेचुरल है
0: जी,
1: तो उसके बारे में भी तुरंत हम लोग बता देते हैं ताकि उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया जा सके।
0: क्या बात है। और लिसनर्स कहने का आशय यही है कि इसका अगर मैं क्रक्स निकालूं, इसका एक सारांश निकालूं तो उस वक्त आप देख हुए अनदेखा न करेगा, हो सकता है कि बड़ा पछतावा होगा जब आपको पता चले कि उस वक्त जो एक्सीडेंट हुआ था आपने वहां देखा नहीं मदद नहीं की, वो आपका कोई सगा संबंधी था, जिंदगी भर एक पछतावा रह जाता है। लेकिन आप देखिए और तुरंत पुलिस को सूचित करिए, पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है कि पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। और दूसरी बात, आज मैं देख रहा हूं वर्तमान समय में सरकार प्राथमिक उपचार के लिए खर्च भी कर रही है, जो इस तरीके रोड एक्सीडेंट्स के केसेस तुरंत पहुंचते क्योंकि कोई सगा संबंधी उस वक्त वहां होता नहीं है। अंकुर शरण जी जो कि एक एक्सपर्ट के तौर पर रोड सेफ्टी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में बातें करेंगे जरूर मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन सुरशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान के तौर पर जुड़े हुए हैं, आप हैं अंकुश शरण जी। बहुत अच्छे एक पत्रकार के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, रोड सेफ्टी के साथ जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान टाइम्स से एक नामी गिरामी आपका ये अखबार, उससे आप जुड़े हुए हैं। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: रोड सेफ्टी के बारे में आपने जिक्र किया था कि लोग मूक बधिर यानी कि चुप हो जाते हैं, आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से पछतावा होता है कि काश मैं उस वक्त उस व्यक्ति की मदद कर देता जो कि मेरा सगा संबंधी था। जब ये शब्द आता है तो लोग दिमाग की बत्ती जलती है। मैं ये जानना समझना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट्स होते ही क्यों हैं, क्या एक वजह है कि हम सबको पता है कि ये हमारी एक लिमिट है, उस लिमिट को हम क्रॉस कर जाते हैं। ओवरटेक आप कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी लेन से ही क्रॉस कर रहे होते हैं। हम लोगों को देखते हैं कि रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं, इधर उधर से वो गाड़ी को ओवरटेक कर रहे होते हैं, एक्सीडेंट्स के बहुत ज्यादा केसेस हमारे सामने आते हैं। तो आपका अनुभव क्या कहता है?
1: देखिए, सबसे पहली बात तो है नेग्लिजेंस। ये एक ऐसा वर्ड है कि जो एक तो लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड नेग्लिजेंस, इसी वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। हमें जब पता है कि आपके ऑफिस का टाइम 9 बजे है और आपके घर से ऑफिस पहुंचने में आपको 1 घंटा लगना है, तो आप 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहले आप निकलिए,
0: क्या बात,
1: ताकि आप उस जो पीक आवर्स है उससे बचा जा सके। अब लोग क्या करते हैं कि अक्सर मैंने देखा है कि लोग पहले तो लेट निकले और उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि हम स्पीड पे ओवर स्पीडिंग करके, और क्योंकि जैसे फरीदाबाद से अब गुड़गांव जाते हैं तो पहाड़ी का रास्ता है, राइट, उस पे 60 से 80 स्पीड अलग अलग जगहों पे बनाई हुई है, लेकिन लोग अक्सर उस पे बहुत स्पीड में जाते हैं। अब क्या है कि उससे एक तो वो अरावली वन क्षेत्र भी है, कई बार उसमें गाय भैंस इस तरीके से बंदर वहाँ पे बहुत होते हैं, अचानक से कोई आ गया और अक्सर हम लोगों ने वहाँ पे एक्सीडेंट होते हुए देखा है। तो हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि भाई इन्फोर्समेंट को आप इतना मत उकसाओ कि वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस इस लेवल की कर दी जाए कि वो आप ही पे भारी पड़ जाए।
0: जी,
1: प्रशासन के तौर पर, क्योंकि हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी
0: जुड़े,
1: उनकी बातों को भी हम लोग लेकर आते हैं, क्योंकि इट्स अ जैसे कहते हैं ना, कॉइन के दो पहलू होते हैं, लाइक सिक्के के दो पहलू होते हैं। उस तरीके से हम लोग ने ब्लेम तो तुरंत कर देते हैं कि भाई इनकी वजह से ये हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम सब डिसिप्लिन में अगर गाड़ी चलाएं, राइट, हमें ओवरटेक करने की बड़ी गंदी आदत है, और वही गंदी आदत जो है वो अब एनसीआर से निकल के हम पहाड़ी क्षेत्रों में जब जाते हैं तो हम वही चीज करते हैं। तो सेम वे हम लोग की ये रडार पे हम लोग हमेशा देखते हैं लोगों को कि कौन कौन सी गाड़ियां अगर देहरादून के क्षेत्रों में गई हैं, तो हमारे पास वो सारा डेटा आता है कि देखिए सबसे ज्यादा एनसीआर की जो गाड़ियां होती हैं वो जाके इस तरीके से कर देती हैं। तो हमें लगता है कि अभी डिसिप्लिन को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, थोड़ा पेशेंस रखिए और इन्फोर्समेंट खुद पे आप रखिए ताकि आप भी सुरक्षित रहें और सड़क भी सुरक्षित रहे।
0: क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने हमारे लिसनर्स तक पहुंचा दिया। और बस हमेशा जब हम सारांश निकालते हैं, एक निचोड़ निकालते हैं, इस बात का सारांश या यूं कहें कि निचोड़ यही है, यकीन मानिए कि आपकी फैमिली, आपके माँ बाप भाई बहन, आपके छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं दरवाजे पर। जब एक दस्तक होती है वो खुश हो जाते हैं कि मम्मी मम्मी पापा आ गए, लेकिन जब खबर आती है कि आज उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई है, तो बहुत बहुत बहुत बुरा लगता है। ईश्वर के वास्ते, खुदा के वास्ते, जिनसे भी आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और अक्सर से दो लाइनें मैं खुद कहा करता हूं कि ये जो जान है दरअसल आपकी जान नहीं है, इस जान पर आपके माँ बाप भाई बहन सबका हक है, तो उनकी जान की खातिर अपनी जान का ख्याल रखिए, तो निश्चित तौर पर सब अच्छा होगा, बेहतर होगा, सुरक्षित चले, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे, कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरक्षा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 एफएम। विद मी मेरे यानी गगन के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन का फर्ज यही है कि समुदाय में हमारे आसपास क्या खास हो रहा है उन बातों को हम जन जन तक पहुंचाएं। रोड सेफ्टी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन जाने अनजाने में लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से जिंदगी भर एक पछतावा रह जाता है कि काश मैंने यातायात के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन किया होता तो आज मैं सुरक्षित होता या अंग भंग नहीं होता। ये सारी बातें हैं जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रोड सेफ्टी एक ऐसा विषय, इस विषय पर बात करने के लिए अंकुर शरण जी हिंदुस्तान टाइम्स से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर।
0: ऑन रोड जब मैं देखता हूं तो मुझे पता है कि राइट हैंड की जो लेन है वो कार के लिए है, ओवरटेक करना है तो राइट हैंड से हम करें, लोग गलत दिशा से ओवरटेक कर रहे होते हैं। इसके विपरीत भी सर हमने ये देखा है कि बसें जो लेफ्ट में चलनी चाहिए थे या ट्रक भी लेफ्ट में चलना चाहिए था वो राइट हैंड में जाके चल रहा है। कैमरास लगे हुए हैं। शायद मैंने जो अनुभव किया है कि हम या पुलिस प्रशासन इंतजार करता है कि मेरे पास कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, कंप्लेंट नहीं हुई है, या यूं कहें कि कभी कभी वो स्वतः संज्ञान लेते हैं। चूंकि आप रोड पर काम कर रहे हैं, आपका अनुभव वही बात निकलकर सामने आती है कि ये जो आपका एक्सपीरियंस है इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, ये सही है गलत है या क्या सुधार की आवश्यकता है?
1: देखिए, हम लोगों ने सुना है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती।
0: सही कर,
1: हम लोग जब तक गाड़ी चला रहे हैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिस दिन आप सोचिए हजारों लाखों गाड़ियां रोड पे दौड़ रही होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाड़ी भिड़ती है
0: जी,
1: एक्सीडेंट होता है
0: जी,
1: लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं
0: जी,
1: उन सब को अगर हम लोगों ने जब देखा है तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि ओवरटेक अगर ये हुआ है, अगर गलत डायरेक्शन से हुआ है
0: जी,
1: तो पहली तो पेनल्टी उस इंसान के ऊपर आ जाती है कि जिसने ओवरटेक गलत तरीके से किया।
0: यानी कि जब एक्सीडेंट हुआ है तो सारा मतलब
1: ये सारा कुछ, क्योंकि एज पर जो रिकॉर्ड्स देखा जाता है, जब प्रत्यक्ष गवाही जब ली जाती है या एफआईआर दर्ज होता है, क्योंकि आप ये देखिए इंश्योरेंस आप लोग क्लेम करते हैं, अगर मैं मान लीजिए कि इंश्योरेंस वाला हूँ तो मैं भी तो देखूंगा ना कि भाई हमारी कंपनी अगर आपको इंश्योरेंस दे रही है तो कहीं आप गलत ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं, कल आप वो मैल प्रैक्टिस में तो नहीं है कि आपने नशा किया हुआ है तो आप नल एंड वॉइड हो जाता है, गलत डायरेक्शन से आपने ओवरटेक किया तब वो नल एंड वॉइड हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे ध्यान में रखने की जरूरत होती है। लेकिन आजकल क्या है कि हम लोगों ने अपना लाइसेंस बनवा लिया, हमारे हाथ में फोन आ गया, महंगी कारें आ गई, तो सोचा चलो अब तो ये रोड अपनी है। रोड आपकी नहीं है, रोड एक समाज की है, समाज के भी आप अभिन्न हिस्सा हैं। जब हम लोगों ने देखा, नितिन गडकरी साहब से जब मुलाकात हुई और एक युवा रोड सम्मेलन एक हुआ था उसके अंदर हमें उनसे मिलने का मौका मिला, तो वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छे रोड्स तो बना दिए लेकिन इस पे चलने की जिम्मेदारी आप सबकी है,
0: बेशक
1: युवाओं की है।
0: बहुत सही।
1: अगर आपको बहुत रक्तदान देना है तो सड़क पे मत दें। हमारे साथ बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं जो कि आपसे रक्त मांग रही हैं, तरीके से दें ताकि किसी का भला हो सके। मेरे एक अजीज मित्र हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र जी,
0: जी जी,
1: उनकी भी कहानी ऐसी दिलचस्प है कि जब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज दम तोड़ रहे हैं रोड पर, तब उन्होंने किस तरीके से प्रतिबद्धता दिखाते हुए अपने एक जिगरी दोस्त की जब उनकी डेथ हुई ऑन रोड, उसके बाद उन्होंने उसको एक पॉजिटिव तरीके से लेते हुए देखा कि वो जो उनका दोस्त की डेथ हुई वो बिकॉज ऑफ वो हेलमेट उस समय नहीं पहने थे, वो इकलौते बेटे थे अपने माँ बाप के, और इस हादसे के बाद उन्होंने संकल्प लिया और आज वो हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से पूरे देश में प्रचलित हैं। और हम लोगों ने उनके साथ भी मिलकर, रोड सेफ्टी स्क्वाड के साथ मिलकर बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हम लोग प्लान कर रहे हैं, और अब आपके इस माध्यम से भी हम लोग चाहेंगे कि लोग सुरक्षित रहें। बस
0: क्या बात है, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है लिसनर्स। मैं तो आशा करता हूँ कि बस ये छोटी छोटी बातें इनको नजरअंदाज ना करिए। माशाल्लाह जिंदगी बहुत बहुत बहुत खूबसूरत है। आप घूमना चाहते हैं, आप किसी शादी में शिरकत करना चाहते हैं, जिंदगी को आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो भाई साहब ये तभी संभव होगा जब आप यातायात के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करते हुए अपने गंतव्य अर्थात बोले तो डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचेंगे सुरक्षित, तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, बातों का जो सिलसिला लगातार जारी है और एक अच्छे विषय पर हम बात कर रहे हैं और एक अच्छी बात हम बात करेंगे ब्रेक के उस पार, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोग रील के चक्कर में उनकी रेल बन जाती है। क्या है ये सवाल, जवाब क्या होगा, जानेंगे जरूर मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल इन सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। रोड सेफ्टी पर आज हम बात कर रहे हैं और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ उपस्थित हैं रेडियो में हैं हमारे साथ हमारे अजीज दोस्त। हमारे साथ हैं अंकुर शरण जी जो कि हिंदुस्तान टाइम्स से ताल्लुक रखते हैं और रोड सेफ्टी पर धरातल पर प्रशासन से मिलकर प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर इस सराहनीय काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिली दुआएं शुभकामनाएं आपके लिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल आपके सामने छोड़ा था कि आजकल हम देखते हैं कि रील के चक्कर में लोगों की रेल बन जाती है, या तो वो एक साजिशन तौर पर ऐसा कर रहे होते हैं या उनको डर नहीं है कि सिर्फ 5,000 का चालान कटेगा या फिर 5,000 का चालान कोई बड़ी बात नहीं है, रील के चक्कर में मेरे पास व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे। और कभी कभी ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि उनके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता, यूं कहें कि अंग भंग या वो खुद नहीं होते दुनिया में। क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, व्यूज के चक्कर में दुनिया पागल हो रही है। अब अगर आपने रोड को भी आपने सोच लिया कि वहां पे भी हमें व्यूज लेना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका इंटरव्यू जो है वो अखबारों में छप जाए। अच्छे काम के लिए आप लोग छपें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो युवाओं से एक ही एक अनुरोध है कि रील्स के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। अगर आपको रील वाकई में बनाना है तो आप सड़क सुरक्षा के ऊपर बनाइए और बना के रोड सेफ्टी स्क्वाड को टैग कीजिए। हमारी संस्था है रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन, राइट, जो कि हरियाणा सरकार के साथ जुड़ी हुई है। बहुत सारा काम हम लोग फरीदाबाद, गुड़गांव, चंडीगढ़ में।
0: और आप कह सकते हैं गगन आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद से मैं आता हूं।
1: आप तो हैं ही जुड़े।
0: थैंक यू सर।
1: तभी सर हम लोग को कोशिश रहती है कि हम युवाओं को किस तरीके से लीड बाय सेटिंग एग्जांपल्स दें। और अगर आप वाकई में अच्छी रील्स बनाना आपको आता है तो प्लीज क्यों ना आप सड़क सुरक्षा के ऊपर ऐसी रील्स बनाएं ताकि उसको हम अपने ऑफिशियल हैंडल्स पे डालें। हरियाणा पुलिस से लेकर ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपके चीजों को आगे प्रदर्शित करेगी और प्रॉपर चैनल्स के साथ प्रदर्शित करेगी, तो डेफिनेटली उसमें व्यूज भी मिलेंगे और आपको कहीं ना कहीं हम लोग सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स भी दिलवाएंगे।
0: क्या बात है, व्यूज भी मिलेंगे और आपकी न्यूज भी छपेगी अच्छी सकारात्मक दिशा में। सर वक्त का इशारा लगभग हो ही चुका है और मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें रही, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोबारा जब भी आप इस तरफ आए तो जरूर आएगा, क्योंकि भाग दो हम करना चाहेंगे क्योंकि बातें बहुत ज्यादा है, समय मेरे पास कम है। एक छोटी सी वाकया को अक्सर हम लोग देख रहे होते हैं, आप भी हम भी, अननेसेसरी लोग क्या मानसिकता होती है उनको दिख रहा है कि वो 500 मीटर तक गाड़ियां खड़ी हुई हैं और पीछे से पैं पौ, यानी कि अनावश्यक तौर पर वो हॉर्न बजा रहे होते हैं। इस मानसिकता से लोग कैसे निकलें, कैसे वो अपने आप को एक सही दिशा में लेकर जाएं उन लोगों के लिए, या यूं कहें कि एक क्रक्स, एक संदेश क्या होगा हमारे लिसनर्स के लिए?
1: देखिए, मेंटल हेल्थ मैटर्स।
0: क्या बात है।
1: अगर आप मेंटली अनफिट हैं और अगर आपकी वजह से दूसरे परेशान हो रहे हैं तो निसंदेह लॉ ऑफ कर्मा आपको इस तरीके से वो मेंटल प्रेशर डाल देगा कि या तो आप गाड़ी चलाने लायक नहीं बचेंगे। और हम लोगों ने एक बड़ा सिद्धांत के ऊपर हम लोग काम करते हैं कि अगर आपने वाकई में एक इंसानियत दिखानी है तो आप वहां पे हॉकिंग का प्रयोग कीजिए जहां पे इसकी वाकई में आवश्यकता है। भारत में भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे बहुत ही डिसिप्लिन में लोग गाड़ी चलाते हैं और हॉकिंग स्पेशली अगर आपको देखना है तो जाके आप चंडीगढ़ में जाके चलाइए गाड़ी, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने तरीके से लोग वहां पे गाड़ी चलाते हैं।
0: सर ये दूर की बात आपने की है, अगर नियम कायदे कानून देखना है तो जनपद के आसपास देखें, सिर्फ वही नियम लगा।
1: आप ये देखिए कि अगर वही वाली बात है ना, स्ट्रिक्टनेस एंड एनफोर्समेंट, जब दिल्ली पुलिस आपके जब तत्पर खड़ी होती है तत्पर है तो आप बहुत ज्यादा
0: सीट बेल्ट लगा लेते हैं,
1: बेल्ट खौफ में नजर आएंगे, डिसिप्लिन में रहते हैं। और ये डिसिप्लिन होना चाहिए,
0: होना ही चाहिए।
1: तो ये चाहूंगा कि एनसीआर लेवल पे जहां पे भी अगर आपको पुलिस दिखती है, और पुलिस ही नहीं आप खुद में कंट्रोल रखिए सारी चीजें, क्योंकि कोई देखे ना देखे ऊपर वाला देख रहा।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी चर्चा रही है सर आपके साथ और बहुत अच्छे आप वक्ता है। मैं तो ये कहूंगा कि आप इधर भी आकर यानी कि ऐसे आरजे के तौर पर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत अच्छी, अच्छा ज्ञान है और अच्छी तरीके से कट टू कट बात आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई है। कुछ और कहना चाह रहे हैं आप?
1: गगन जी, एक आपके माध्यम से मैं चाहूंगा जो भी लिसनर्स हैं, आज भारत को बहुत सारे वॉलंटियर्स की जरूरत है। लीडर्स तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन अगर आप सही माने में अगर वॉलंटियर बनते हैं और सड़क सुरक्षा के प्रति अगर आप जागरूक हैं भी और करना चाहते हैं, तो प्लीज आप शादा को सुनिए 90.8 एफएम। और साथ ही में जो लिसनर्स आपको लगता है कि हाँ दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ आवर रोड सेफ्टी स्क्वाड, प्लीज डू कनेक्ट विद अस हम लोग ट्विटर पे भी मौजूद हैं।
0: सो प्लीज टेल अस सर वो डिटेल्स क्या है, वो आईडी क्या है या कॉन्टेक्ट नंबर क्या है।
1: सीधा कि आप ट्विटर पे एक्स पे जाके रोड सेफ्टी स्क्वाड डालिएगा, हमारा पेज उसके अंदर आ जाएगा। साथ ही में जो लिखना चाहते हैं कुछ वो प्लीज लिख के दें, हम लोग ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओस के साथ मिलकर इसको पूरे भारतवर्ष में चीजें बढ़ा रहे हैं, प्रचार प्रसार के साथ माध्यम से आप लोग मीडिया सोशल मीडिया जिस भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं प्लीज जुड़िए, ताकि लेट्स बी वोकल फॉर लोकल रोड सेफ्टी।
0: क्या बात है, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से सर एक बार पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि समाज को आपकी आवश्यकता है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बस लिसनर्स यही कहूंगा कि समझदारी दिखाइए, अपने आप को बीमार मत प्रदर्शित करेगा ऑन रोड, जिस तरीके से हमारे गेस्ट ने ये बात रखी है कि कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी आप दिखा रहे होते हैं, क्योंकि अनावश्यक तौर पर जब आप हॉर्न बजाते हैं और अनावश्यक तरीके से गाड़ी को जब आप ओवरटेक करते हैं, या कुल मिलाकर यही कहूं कि यातायात के नियमों का हमें अच्छी तरीके से पालन करना है। घर में ऑफिस में कहीं ना कोई कोई आपका इंतजार कर रहा है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, तो बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और यातायात के नियमों का पालन करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। और बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरू शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ, सोमवार से शनिवार सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। और इसके अलावा फीडबैक कमियां खूबियां जरूर बताएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, 01204060205 अर्थात 120 40 60 205। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ec.in पर भी आप हमें मेल के जरिए मेल जोल बढ़ा सकते हैं। वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9-11। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
4: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार और स्वागत है आपका टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीवी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
3: जी।
2: प्लीज कैरी ऑन।
3: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
2: तो मतलब इस क्लास का सार है लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
3: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
2: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: गगन कोकरी फतेह।

0: लेकिन दोस्त अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी आरजे वैष्णवी। हम बात करेंगे एक बहुत ही खास अभियान की जिसका नाम है राष्ट्रीय पोषण माह। इस विषय पर विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे स्वास्थ्य साथी समुदाय के अपने सेहतिया सिंह जी। तो सेहतिया जी, आपका स्वागत है।
1: बहुत

0: बहुत धन्यवाद वैष्णवी जी और हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत स्वागत है। मुझे खुशी है कि आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो हर घर से जुड़ा हुआ है, पोषण और सेहत।
1: बिल्कुल सही कहा आपने भैया। सबसे पहले तो हमें यह बताइए कि राष्ट्रीय पोषण माह होता क्या है और क्यों मनाया जाता है।
0: आपने पूछा है तो बिल्कुल बताएंगे। देखिए, राष्ट्रीय पोषण माह पहली बार 2018 में शुरू हुआ था। हर साल सितंबर से एक महीने तक इसे मनाया जाता है। इसका मकसद है लोगों को पोषण के बारे में जागरूक करना, स्वस्थ आदतें अपनाना और सही व्यवहार में बदलाव लाना। अब तक देश भर में 130 करोड़ से ज्यादा पोषण से जुड़ी गतिविधियां हो चुकी हैं।
1: सेहतिया जी, इस पोषण माह की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है, क्या आप बताएंगे?
0: देखिए वैष्णवी, अच्छा पोषण ही सही सेहत का राज है। अगर माँ, बच्चा और किशोरी लड़कियां स्वस्थ और पोषित होंगे तो देश भी मजबूत होगा। पोषण माह का मकसद है समुदाय को जागरूक करना, सरकारी सेवाओं को और बेहतर बनाना और सही जानकारी हर घर तक पहुंचाना। ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं, बल्कि इसमें पर्यावरण, समानता और सबके सशक्तिकरण की बात है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे पता चला है कि अलग अलग राज्यों में कई नए नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे?
0: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। जैसे उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के अभिलाषी ब्लॉक जमुनहा में सरकार और समुदाय ने मिलकर एक अच्छा मॉडल तैयार किया है। वहाँ आंगनवाड़ी और आशा बहनों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया, पोषण ट्रैकर जैसे ऐप का इस्तेमाल हुआ और इससे गंभीर कुपोषण और मध्यम कुपोषण के मामले घटे। इसी तरह स्कूलों में ईट राइट अभियान चल रहा है, इसमें बच्चों को सुरक्षित और पोषित खाना मिलता है। स्कूलों में सेहत क्लब बन रहे हैं, पोषण बगीचे तैयार किए जा रहे हैं, बच्चे खुद सीख रहे हैं कि स्वस्थ रहने के लिए कैसा भोजन जरूरी है। संदेश पहुंचाने के लिए दीवार पर चित्रकारी, स्वास्थ्य डायरी, कैलेंडर और खेल तक का सहारा लिया जा रहा है।
1: अरे वाह, यानी जो संदेश हम रेडियो पर सुनाते हैं वही धरातल पर भी लोगों की जिंदगी बदल रहा है।
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ एक महीने का कार्यक्रम नहीं है। इसके जरिए ऐसा माहौल तैयार होता है जिसमें हर घर और हर व्यक्ति अपनी सेहत और पोषण को महत्व देता है।
1: बहुत खूब। तो सेहतिया जी, आज की बातचीत से मुझे यह समझ आया कि राष्ट्रीय पोषण माह सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि एक आंदोलन है जो हमें सुपोषित भारत की ओर ले जा रहा है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सबका ये फर्ज है कि घर घर तक पोषण का संदेश पहुंचाएं। छोटी छोटी आदतें बदलकर हम अपने बच्चों, माताओं और पूरे समुदाय का भविष्य बेहतर बना सकते हैं।
1: तो इसका मतलब पोषण तो जरूरी है ही, लेकिन असल जीवन की शुरुआत होती है माँ की गोद और उसकी देखभाल से। और इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है जो वैज्ञानिक रूप से भी साबित हो चुका है? कंगारू मदर केयर यानी KMCI।
0: ये तो एकदम सही बात बोली आपने। KMC एक खास देखभाल की विधि है, खासकर उन बच्चों के लिए जो समय से पहले पैदा होते हैं या जिनका जन्म के समय वजन कम होता है। इसमें माँ या देखभाल करने वाला व्यक्ति बच्चे को सीधे अपने सीने से चिपकाकर स्किन टू स्किन लगाकर रखता है। इसके फायदे बहुत बड़े हैं। बच्चे के शरीर का तापमान ठीक रहता है, संक्रमण और ठंड लगने का खतरा घटता है, बच्चा माँ का दूध अच्छे से पीता है और माँ बच्चे का रिश्ता भी और गहरा हो जाता है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे छोटे या प्री टर्म बच्चों की देखभाल के लिए जरूरी मानक बताया है।
1: सचमुच यह जानकारी तो हर माँ बाप तक पहुँचनी चाहिए। और इसी विषय पर और विस्तार से बात करने के लिए अब हम सुनेंगे डॉक्टर मनोज पाल, जो हमें KMC के बारे में और अहम जानकारियाँ देंगे।
2: आज हमारे साथ डॉक्टर मनोज पाल मौजूद हैं, जो कि द फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर पाल एक मेडिकल डॉक्टर और पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं। उन्होंने सुरक्षित ऑपरेशन, मातृ स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आपातकालीन देखभाल और लैंगिक हिंसा जैसे कई अहम मुद्दों पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम चलाए हैं और सरकार को तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया है। उनकी खासियत है कि वे कार्यक्रम में क्वालिटी और समावेशन का ध्यान रखते हैं, चाहे बात महिलाओं की हो, युवाओं की हो या पूरे समुदाय की हो। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर डॉक्टर और मनोचिकित्सज्ञ के रूप में भी काम किया है। लोग उन्हें पीपल्स पर्सन भी कहते हैं क्योंकि वे कठिन परिस्थितियों में भी शांत और सहज बने रहते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर पाल मौजूद हैं और वो हमारे साथ कंगारू मदर केयर पर कुछ बातचीत करेंगे। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सर, हमारा और हमारे समुदाय का पहला सवाल ये रहेगा कि कंगारू मदर केयर आखिर है क्या और इसे भारत के जननी सुरक्षा कार्यक्रम में कैसे जोड़ा गया है?
3: आप जानेंगे कि जैसे हमारे यहाँ बहुत से बच्चे समय से पूर्व यानी प्री टर्म पैदा होते हैं या उनका वजन जितना होना चाहिए उससे कम होता है, जिसको हम लो बर्थ वेट कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कंगारू मदर केयर एक तरीका है जिसके द्वारा बहुत सारा इन्फेक्शन या बच्चों में होने वाले तापमान की कमी हाइपोथर्मिया से बचा जा सकता है। ये बहुत ही लो कॉस्ट, जिसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती है, एक तरीका है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है और भारत सरकार भी इसे अपने कार्यक्रम में लगभग 2014 से शामिल कर चुकी है, जिसकी गाइडलाइंस भारत सरकार द्वारा पहले दी जा चुकी
2: है। सर, दूसरा सवाल ये है कि माँ की छाती से नवजात को चिपका कर रखने के क्या फायदे हो सकते हैं और ये नवजात मृत्यु को कैसे कम करता है?
3: तो माँ की छाती से नवजात को चिपकाना के बहुत सारे फायदे हैं। अमूमन जब भी बच्चा पैदा होता है तब भी बच्चे को माँ की छाती पे रखा जाता है, अगर वो स्वस्थ होता है तब भी, यानी अगर बच्चा लो बर्थ वेट नहीं है, बच्चा प्रीटर्म नहीं है, तब भी उसे माँ की छाती से चिपकाने के बहुत लाभ होते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों में जहाँ वजन कम हो या वो समय से पूर्व पैदा किए हो, यहाँ ये बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे बच्चे हाइपोथर्मिया से यानी उनका जो शरीर का तापमान है वो गिर जाता है, इस चीज का बहुत संभावना ऐसे बच्चों में रहती है, जिसके लिए ये जरूरी है कि वो माँ के स्तन के पास जो है वो चिपके रहे। इससे माँ का टेम्परेचर और बच्चे का टेम्परेचर बराबर रहता है, तो बच्चे में हाइपोथर्मिया नहीं। दूसरा, इससे इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। माँ के शरीर पर जो विषाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वही बच्चे में जाते हैं और वो बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बहुत कारगर होते हैं। तीसरा, इससे माँ के साथ बच्चे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो माँ के साथ चिपका रहता है तो वो माँ को ही देखता है, माँ को ही सुनता है, माँ का ही दूध पीता है, तो इस वजह से बच्चे और माँ की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा इसी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि माँ का दूध जो है वो बच्चे को ज्यादा मिल पाता है। अमूमन ये देखा गया है और हम सभी जानते हैं कि सरकार ने बहुत कोशिश जरूर की है, लेकिन अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी शुरुआत में ही होना तथा पूरे कार्यकाल तक यानी 6 महीने तक होना ये संभव नहीं हो पाया है। तो शुरुआती तौर पर ब्रेस्ट फीडिंग करने से माँ और बच्चे दोनों को बहुत फायदा होता है। इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म देखें तो ऐसे माँ और बच्चे जब साथ साथ रहते हैं कंगारू मदर केयर में, तो बच्चे के न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज जो होते हैं वो कम होते हैं। आगे जाके बच्चे में ऐसे भी स्टडीज हैं जो कहती हैं कि आगे जाके बच्चे में ओबेसिटी, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां कम होती हैं, तो ये सभी के लिए फायदेमंद चीज है।
2: सर, जैसे आपने बताया कि प्रीटर्म बच्चे के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंगारू मदर केयर, तो इसे स्पेशल न्यूबॉर्न SNCU यानी स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट और आशा आंगनवाड़ी सेवाओं से कैसे जुड़ता है, मतलब जोड़ा गया है?
3: जी, तो प्रीटर्म बच्चों को कई बार इंक्यूबेटर की जरूरत महसूस होती है, ये वहाँ के डॉक्टर निर्धारित करेंगे कि उसको इंक्यूबेटर में रखा जाए या माँ की छाती से चिपकाया जाए। अगर मान लीजिए बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको कंगारू मदर केयर नहीं दिया जा सकता, लेकिन जहां पर SNCUs हैं, जहां बच्चा स्टेबल है, उसका सांस ले पा रहा है, वैसे दिल की धड़कन सही चल रही है लेकिन प्रीटर्म है, ऐसे बच्चों को अगर SNCU के साथ कंगारू मदर केयर की सुविधा प्राप्त हो जाए तो ये बच्चों के मोर्टैलिटी को बहुत कम कर सकती है। तो इसलिए सरकार ने भी अभी ये मुहिम शुरू की है कि SNCUs के आजू बाजू जहां तक संभव हो पाए वहां पर कंगारू मदर केयर के वार्ड्स बनाए जाएं, जहां महिलाओं को एक प्राइवेसी मिले कि वो अपने बच्चे को छाती से लगा पाए और उनको इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा सके कि कैसे कंगारू मदर केयर करना है। ये अभी मुहिम चल रही है और जहां नए अस्पताल बनेंगे वहां पर ये SNCU के साथ साथ ही होगा।
2: सर आपने बताया कि शिशु का वजन और स्वास्थ्य तो कैसे सुधरता है कंगारू मदर केयर से, अगर इसे पोषण अभियान से कैसे जोड़ा गया है?
3: देखिए, जहां लो बर्थ वेट बच्चे की बात होती है तो वहां पर ये संभावना हमेशा रहेगी कि जैसे ही वो अपने न्यू बॉर्न पीरियड से 28 डेज के पीरियड से बाहर निकलेंगे तब भी वो कुपोषित रहेंगे अगर उन्हें सही पोषण नहीं दिया गया, और कुपोषण की संभावना उनके लाइफ लॉन्ग रहेगी अगर उनके शुरुआती तौर पर उनको सही पोषण ना दिया जाए। तो कंगारू मदर केयर में शुरुआती तौर पे गाइडलाइंस में बताया गया कि शुरुआती तौर पे कैसे बच्चों को पोषण दिया जाए, यानी माँ का दूध ही दिया जाए, और अगर संभव नहीं है तो फिर माँ का एक्सप्रेस मिल्क दिया जाए, अगर वो भी संभव ना हो तभी फॉर्मूला फीड पे जाया जाए। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होंगे तो उनका पोषण नियमित रहे।
2: सर क्या कंगारू मदर केयर सिर्फ माँ दे सकती है या पिता या अन्य परिवारजन भी किसी भी तरीके से मतलब दे सकते हैं?
3: तो कंगारू मदर केयर कोई भी दे सकता है। माँ के साथ इसको इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग का है, क्योंकि माँ दूध पिला सकती है तो माँ को तो करना ही करना है। लेकिन ये प्रैक्टिकल ये संभव नहीं हो पाता कि सारे टाइम सिर्फ माँ ही बच्चे को लेके, मतलब माँ ही बच्चे को चिपका के रखे, तो इसके लिए जरूरी है कि परिवार के दूसरे लोग हैं वो भी कंगारू मदर केयर कैसे देना है इसके बारे में जानकारी रखें और दें। एक चीज जो इसमें गौर करने लायक है कि प्रीटर्म बच्चों को ज्यादा हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग हैंडल करें, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए परिवार के लोग दो या तीन, जैसे कि सासू माँ हो गई या माँ हो गई और पिता हो गए, वो अगर इसको करेंगे तो उसके कई बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये होगा फिर प्रैक्टिकली होगा। हम कहते हैं कि मदर के साथ कई बार एक्सटेंडेड कंगारू मदर केयर 8 से 12 घंटे करना पड़ता है, तो प्रैक्टिकली कई बार माँ के साथ ये पॉसिबल नहीं। तो अगर इसमें पिता को शामिल किया जाए तो उसके दो फायदे होंगे, एक तो कंगारू मदर केयर हो पाएगा, दूसरा बॉन्डिंग की जहां बात कर रहा है, अगर मदर के साथ टच होने पर बच्चे की बॉन्डिंग होती है तो फादर के साथ भी टच होने पर बच्चे की बॉन्डिंग होगी, और ये दो तरफा होगा, बच्चे की भी होगी और फादर की भी होगी। तो ये जरूरी है कि इसमें परिवार के जनों को जोड़ा जाए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए।
2: और अगर मदर कंगारू मदर केयर करें तो क्या वो 12 घंटे तक ही करना होता है? मतलब क्या समय, कितने समय तक करना चाहिए इसको?
3: मैं कहूँ ये डिपेंड करता है कि 12 घंटे तो कंटिन्यूअस होगा कि अगर बच्चा मान लीजिए बहुत प्रीटर्म है लेकिन हीमोडायनेमिक स्टेबल है, 32 वीक से कम का है, और उसकी कंडीशन क्या है, 4 से लेकर 12 घंटे तक कहीं भी हो सकता है, शॉर्ट पीरियड होता है एक्सटेंडेड होता है, तो कहीं तक बच्चे की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा वो कि कितनी देर करना है। लेकिन अगर बच्चे को मान लीजिए एक्सटेंडेड भी करना है तो जब परिवार होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिर्फ माँ के ऊपर नहीं रहा, माँ बाप और सासू माँ ध्यान रखना पड़ता है उसमें कई बार, क्योंकि अगर आप एक से ज्यादा केयर गिवर के पास जा रहे हो तो ऐसा ना हो कि अगर केयर गिवर साफ सुथरे नहीं है, अगर वो नहा के नहीं आए हैं या कपड़े वैसे हैं तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ केयर गिवर हो और वो इस बात को समझें, इसीलिए शायद फैमिली काउंसलिंग कंगारू मदर केयर में बहुत इम्पोर्टेंट है। जहां तक बात आशा की है, डिस्चार्ज होने के बाद कंगारू मदर केयर कंटिन्यू रहना चाहिए, आशा की विजिट होती है, तो उस विजिट में अगर आशा उनको काउंसिल नहीं कर पाएगी या उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएगी, फॉलो अप नहीं कर पाएगी, तो कंगारू मदर केयर कम्युनिटी में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आशा आंगनवाड़ी को सही ट्रेनिंग देना और उनके फॉलो अप में शामिल करना दो कारगर तरीके होंगे जिससे कंगारू मदर केयर को कम्युनिटी में भी करा जा सकता है।
2: सर ग्रामीण इलाकों में इसे अपनाने में क्या दिक्कतें आती हैं? जैसे CHC, PHC, इनका क्या हल निकाल सकती हैं?
3: देखिए, कई बार दिक्कतें कम्युनिटी में किस तरह की सोच है और किस तरह के वहां पर वैल्यूज हैं उस पे बहुत डिपेंड करता है। अभी भी हमारे यहाँ कई कम्युनिटीज में, कई ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है कि वो अभी भी मदर और चाइल्ड को सेपरेट रखने की कोशिश की जाती है, कि एक बार दूध पिला दिया और बच्चे का डायपर चेंज हो गया तो उसको सेपरेट करने की कोशिश की जाती है। प्री टर्म लो बर्थ वेट में ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन उनको समझाना ये चीज कि ये क्यों जरूरी है और कैसे जरूरी है, आज की डेट में बहुत जरूरी है। दूसरा, एक हमारे यहाँ कभी भी अगर हम थोड़ा सा जेंडर रोल्स की बात करें तो कभी भी फादर को बहुत टच नहीं करने देते हैं, खासकर प्री टर्म बच्चा या जब बच्चा छोटा होता है, लो बर्थ वेट होता है, तो लोगों को बहुत डर होता है कि हम इसको पकड़ेंगे कैसे, बच्चे की गर्दन के नीचे हाथ रखना होता है या बच्चे को स्ट्रेट पकड़ना होता है, तो वो डर जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन से या जब आशा या आंगनबाड़ी उनको बताएगी तभी निकाला जा सकता है, और उनको इन्वॉल्व करने से, यानी कि अगर हम KMC की काउंसलिंग कर रहे हैं सिर्फ मदर की करेंगे या सिर्फ मदर और मदर इन लॉ की करेंगे, सासू माँ की करेंगे, तो शायद वो वहीं तक रह जाएगा, वो ज्ञान जो है वहीं तक रह जाएगा। तो जरूरी है कि फादर इसमें इन्वॉल्व किया जाए, उनको सिखाया जाए। ऐसा नहीं है कि फादर पकड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन डर, उस डर को कैसे निकाल सकते।
2: सर, SDG 3 के लक्षणों को पूरा करने में कैसे मदद करता है ये?
3: देखिए अभी SDG 3 का अगर आप देखें तो मैक्सिमम मोर्टैलिटी जो है हमारी नियोनेटल पीरियड में ही हो रही है। अभी भी भारत सरकार तो अर्ली नियोनेटल मोर्टैलिटी को लेस देन 10 करने पे काफी जोर दे रही है, बट अभी भी लगभग लगभग 45% जो हमारी मोर्टैलिटी है वो नियोनेटल पीरियड में होती है। हमारे गोल्डन रूल कि 1:1:1, यानी सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट डे। सबसे इम्पोर्टेंट रीजन उसमें प्री मैच्योरिटी है और लो बर्थ वेट है। तो अगर हम प्री मैच्योरिटी और लो बर्थ वेट दोनों को एड्रेस कर पाएंगे तो SDG का लक्ष्य जो है वो हासिल करने में हमें बहुत आसानी होगी। तो ये दो मेन रीजन है नियोनेटल मोर्टेलिटी।
2: सर, आई थिंक सारे सवालों का आपने जवाब दे ही दिया है। बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि मतलब आपने बता दिया है कि कैसे माँ बाप और मतलब परिवारजन सहयोगकर्ता बन सकते हैं, लेकिन आप समुदाय को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि जन्म के तुरंत बाद माँ को, फैमिली को, पिता को क्या करना चाहिए, मतलब कैसे सहयोगकर्ता बनना चाहिए?
3: जन्म के तुरंत बाद मैं तो यही बोलूंगा कि बच्चा उनका है, वही सबसे बढ़िया देखभाल कर सकते हैं। ये साइंस भी कहती है, ये हमारा कल्चर भी कहता है। तो जन्म के तुरंत बाद बच्चे को मैक्सिमम प्रोटेक्शन देना, उनको माँ के करीब रखना, माँ और बाप के करीब रखना, ये एंश्योर करना कि उसको फीडिंग मिल रहा है और नेचुरल फीडिंग मिल रहा है। नेचुरल फीडिंग से मेरा मतलब है ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और ये एंश्योर करना कि बच्चा किसी भी तरीके से हाइपोथर्मिया में, यानी बच्चे को कभी ठंड ना लगे। और इसका सबसे बेहतर उपाय है कि बच्चा स्किन के कॉन्टेक्ट में रहे। इसका एक सिंपल रीजन ये है कि हमारा टेम्परेचर 37, बच्चे को चाहिए 37, स्किन पे टेम्परेचर आया 37, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कुछ भी चल रहा है। इसलिए स्किन सबसे बेहतर तरीका है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो उसको मेंटेन करें, साफ सफाई, यानी कि बच्चे, खासकर प्रीमेच्योर बच्चे, बहुत उनका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता है तो इन्फेक्शन होने की बहुत संभावना रहती है। और इन्फेक्शन रोकने के बड़े सिंपल तरीके होते हैं, आपके शरीर जिससे आप चिपका रहे हैं वो साफ होना चाहिए, बच्चे के कपड़े साफ होने चाहिए, और बहुत ज्यादा हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा बच्चे। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा एक चीज और, ऐसी परिस्थितियों में क्लिनिकल डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी होता है। किस बच्चे को कितनी देर के लिए रखना है, किसी को 4 घंटे चाहिए, हम किसी को 6 घंटे चाहिए, किसी को 12 घंटे चाहिए, किसी को डायरेक्ट ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं, कहीं नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में अपने डॉक्टर, अपने नर्स पे विश्वास भी करें कि वो आपके बच्चे के लिए ही सारे काम कर रहे हैं।
2: जी
3: ये इसमें विश्वास करना बहुत जरूरी
2: सर, इसकी अवेयरनेस अभी कम है, इसकी अवेयरनेस और लोगों में फैलाने की ज्यादा जरूरत
3: है।
2: है।
3: इसकी अवेयरनेस बहुत, अभी बहुत कम है। हम देखते हैं अभी बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, खासकर जब हम बोलते हैं कि 4 घंटे 6 घंटे, तो उनको लगता है कि इसकी क्या जरूरत
2: जी,
3: है।
2: अवेयरनेस कम है तो क्या कुछ मिथ्स भी हैं लोगों के दिमाग में इसको लेके?
3: मिथ्स हैं, मिथ्स लोग इसके जो इम्पोर्टेंस है वो समझ नहीं पाते। तो जैसे ही मान लो कंगारू मदर केयर आपने अस्पताल में शुरू भी करवा दिया और ये बोल के भेज दिया कि आप घर पे कर लेना, लेकिन क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस लोग समझ नहीं पाते इसलिए वो घर पे जाके करते नहीं है, और बच्चा फिर वापस लैंड करता है OPD में कि बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है ना, बच्चा का वजन कम हो गया। तो ये थोड़ा सा लोगों को शायद समझाने की जरूरत है। इसका नेगेटिव मिथ्स नहीं है बट इसके पॉजिटिव मिथ्स भी नहीं है।
1: सेहतिया जी और डॉक्टर मनोज पाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज बहुत उपयोगी जानकारी दी। तो दोस्तों, आप भी अपने गांव और अपने घर में इस पोषण माह को सफल बनाइए, स्वस्थ रहिए, पोषित रहिए। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आपकी आरजे वैष्णवी कहती हूँ आपको नमस्कार, पर जान करने से पहले हम एक शपथ लेंगे। तो सेहतिया जी आइए साथ में शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है,
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे,
1: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत से ही तो

0: तो अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे, जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है। कैसे, जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नाम तो सुना ही होगा।
3: राम राम दोस्त राम, सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
4: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
5: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, गम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
4: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं?
5: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुटलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
4: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज अ इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
5: एक इंसान को व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती है। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है ये हमारे अंदर, ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है, वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
4: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे बड़े नाम कहानियां बदल जाती है लेकिन कम्युनिटी छोटा सा प्रदेश उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
5: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इम्पैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलिवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
3: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलिवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुनो शारदा 90.8 एफएम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: Hi everyone, this is Dania Joshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM।
6: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
7: The world is here.
8: डेंगू और मलेरिया का दी एंड। दिमागी बुखार का दी एंड। ये
9: तारा तुम कर क्या रही हो? तारा
8: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
9: ओह

0: मच्छरों पे कैसे करना है बात, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी,

0: और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की, किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की, फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: I'm sorry नमे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
2: It's over, अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती।

0: What is this shit? मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ.
1: So what? मैं काम में बिजी था यार. तुम मुझसे मिलना चाहती थी. मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो.
0: You know, Shail, it really hurts.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ

0: यूनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
1: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, भारत सरकार कई तरह की योजनाओं का संचालन करती है और इन योजनाओं के जरिए जरूरतमंद और गरीब वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है। वही समय समय पर कई पुरानी योजनाओं को और बेहतर बनाने के लिए इनमें बदलाव भी किए जाते हैं, जबकि कई योजनाओं को नए तौर पर शुरू किया जाता है। जैसे सितंबर 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की थी। किसान मित्रों, इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को लाभ पहुंचाना है जो 18 पारंपरिक व्यापारों से जुड़े हैं। इस योजना के तहत न सिर्फ काम को एडवांस तौर पर सीखना बल्कि कई आर्थिक लाभ भी दिए जाते हैं, बशर्ते कोई भी इस योजना के लिए पात्र हो और इस योजना से जुड़ा हो। और अब किसान मित्रों बात करते हैं उन 18 पारंपरिक व्यापारों की जिनसे जुड़े लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जैसे जो लोग दर्जी हैं, जो लोग जूता बनाने का काम करते हैं, जो लोग मूर्तिकार हैं, जो लोग नाई का काम करते हैं, जो लोग पत्थर तोड़ने वाले हैं, जो लोग ताला बनाने का काम करते हैं, जो लोग गुड़िया और खिलौना बनाते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, लोहार हैं, जो लोग मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं, जो लोग हथौड़ा और टूल किट बनाते हैं, जो राजमिस्त्री हैं, जो लोग टोकरी चटाई झाड़ू बनाने का काम करते हैं, जो लोग माला बनाने का काम करते हैं, जो लोग कपड़े धोने का काम करते हैं और जो लोग पत्थर तराशने का काम करते हैं, तो ये सब इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ने के बाद लाभार्थियों को कुछ दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग लाभार्थियों को एडवांस तौर पर दी जाती है, जिसमें उनको अपने काम को और बेहतर करने का काम सिखाया जाता है। इसके लिए जब तक ये प्रशिक्षण दिया जाता है तब तक उनको रोजाना 500 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा लाभार्थियों को 15,000 रुपए टूल किट खरीदने के लिए भी दिए जाते हैं। अब बात आती है कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जाए। तो कोई भी जो 18 पारंपरिक व्यापारों में से किसी भी काम से जुड़ा हुआ है तो वो अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र में जाकर के प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन कर सकता है और इस योजना का लाभ ले सकता है। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में, और आइए अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन की तरफ और आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं तरुण बाल्यान।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे तरुण बाल्यान से ये उपदेश। किसान मित्रों, आपकी सहायता के लिए प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। इन केंद्रों पर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा हमारे किसान भाइयों की हर एक समस्या का समाधान किया जाता है। हमारे किसान भाइयों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ज्ञान का केंद्र है। यदि हमारे किसान भाइयों को खेती करने में किसी भी तरह की समस्या आती है, जैसे फसल पर कीट लग जाते हैं, फसल पर रोग का प्रकोप है, फसल में खाद की मात्रा कितनी देनी चाहिए, नई फसल की जानकारी, कृषि यंत्रों के इस्तेमाल और जैविक खेती करने में कोई समस्या आ रही है, आपके क्षेत्र के अनुसार कौन कौन से उत्तम किस्म के बीज हैं। किसान मित्रों, कृषि विज्ञान केंद्रों पर कृषि से संबंधित बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जैसे किसान चौपाल, किसान मेला, एकीकृत कृषि प्रणाली, मिट्टी परीक्षण, कृषि में उपयोग होने वाली नवीनतम तकनीक, कृषि मशीनरी और उपकरण, सिंचाई प्रणाली और कृषि प्रदर्शनी की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा फसल में लगने वाले कीट और रोगों से संबंधित जानकारियों के साथ साथ किसानों के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। किसान भाइयों को इन कार्यक्रमों में आमदनी बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। इन सभी कार्यों की जानकारी कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दी जाती है। इसके अलावा समय समय पर किसान भाइयों को मुर्गी पालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, डेयरी फार्मिंग और जैविक खेती का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो इस तरह के प्रशिक्षण लेकर हमारे किसान भाई खेती के साथ साथ अतिरिक्त आमदनी भी कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना कृषि विज्ञान केंद्रों की उपयोगिता के बारे में। और आइए अब आपका करवाते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं एक रागनी। किस्सा रहेगा द्रौपदी चीरहरण का और गायक कलाकार हैं रविंदर खालौर।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रविंदर खालौर से ये रागनी, किस्सा था द्रौपदी चीरहरण का। किसान मित्रों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने इस योजना को जुलाई 2015 में शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में उन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी है। इस योजना में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य देश में सभी युवा वर्ग को संगठित करके उनके कौशल को निखार कर उनकी योग्यता अनुसार रोजगार देना है। तो हमारे जो भी युवा साथी हैं और कुछ रोजगार हासिल करना चाहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं या पढ़ाई किसी वजह से छूट गई है, तो वो अपने नज़दीकी आसपास देखें, कोई कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र होगा वहां जाकर के संपर्क कीजिए और जिस काम में आपकी रुचि है उसके अनुसार आप कोर्स का चुनाव कर सकते हैं और उसमें प्रशिक्षण लेने के बाद आसानी से रोजगार हासिल कर सकते हैं और यही इस योजना का उद्देश्य है। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं योगेंद्र निमचाना से एक रागनी, किस्सा रहेगा रामायण का।

योगेंद्र निमचाना द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो शारदा 90.8 FM।
5: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी।

0: स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की, केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन, बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

लीजिए चंदा केसित के सौजन्य से सत्यवान सावित्री का दूसरा भाग। मेहरबानों सावित्री जिद पकड़ जाती है, बहुत समझाया आवागमन लाभ हानि जो दुनिया का दस्तूर और जो कुछ लिखा ललाट में तो होगा बहुत जरूर। तो दोस्तों सत्यवान के साथ सावित्री की ब्याह सगाई हो गई और सावित्री को पूरी तरह से ये मालूम थी कि सत्यवान वाकई एक साल से ज्यादा जीवेगा नहीं, लेकिन अपने सत का उसे गर्व था। पतिव्रता सतीवीर ने व्रत रखना शुरू कर दिया और दोस्तों जब साल का आखिरी समय आ लिया तो चेहरे पर उदासी छाने लगी

0: 11 बजे आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: दिमागी बुखार का दी एंड। ये
2: तारा तुम कर क्या रही हो? तारा
1: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
2: ओह।

0: मच्छरों पे कैसे करना है वार, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

नमस्कार, मैं हूं साकिब शेख और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM। और आज इस कार्यक्रम में हम एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बात को लेकर हाजिर हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाकर हमारे करीब आए और इस चर्चा में शामिल हों। श्रोताओं, आज हम इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम जो है आप 90.8 FM यानी सुनो शारदा और स्मार्ट के सौजन्य से सुन पा रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं लैंगिक हिंसा किशोर रव्य के लिए क्यों मायने रखती है। इसमें हम आज खास तौर से बात करेंगे लैंगिक हिंसा के संदर्भ का कारण और लैंगिक हिंसा की परिभाषा के बारे में बताएंगे कि एक जो प्रॉपर परिभाषा है वो क्या है। और खास तौर से हम बात करेंगे जीवन चक्र के दौरान कौन कौन सी लैंगिक हिंसा हमारे समाज में कुरीतियां के रूप में मौजूद है। और खास तौर से आज हम बात करने जा रहे हैं जन्म से पहले कौन कौन सी कुरीतियां हैं, जैसे जेंडर आधारित लिंग चयन, गर्भावस्था के दौरान पिटाई, महिलाओं के भावात्मक और शारीरिक प्रभाव, भावी शिशु प्रभाव और अत्याचार के कारण गर्भधारण, उदाहरण के लिए युद्ध में सामूहिक बलात्कार। और फिर उसके बाद हम शैशव गुण के बारे में बात करेंगे, यानी कन्या हत्या, भावात्मक तथा शारीरिक दुर्व्यवहार, बालिका शिशुओं से भोजन उपलब्धता तथा चिकित्सा के देखभाल के मामले में भेदभाव। और हम बात करेंगे बालिकाओं का बचपन यानी बाल शीघ्र विवाह, यौन उच्छेदन, पारिवारिक सदस्य तथा अजनबियों द्वारा यौन दुर्व्यवहार, भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा देखभाल तथा पशुओं में भेदभाव। और अंत में बात करेंगे बाल वैश्यवृत्ति यानी चिल्ड्रन प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। आपसे ढेर सारी बातें करनी है, तो आप रेडियो के थोड़ा करीब आ जाइए और अपने वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप हमारी वो दो माध्यम नोट कर लीजिए जिसके जरिए से आप अपनी राय, प्रतिक्रिया या फिर फीडबैक दे सकते हैं। तो आज हम मोटा मोटी यूं कह लीजिए कि आज हम क्या बात करने जा रहे हैं, यौन हिंसा के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारा वो दो माध्यम फोन नंबर और ईमेल एड्रेस है। हमारा फोन नंबर है 01204060205 यानी 01204060205 एंड हमारा ईमेल एड्रेस है 90.8 FM@sharda.ac.in। ये हमारा ईमेल एड्रेस है। तो चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। ज्यादातर इस कार्यक्रम को लेकर हमारे सहयोगी गगन आप तक पहुंचते हैं और आपसे बातचीत करते हैं। आज मैं हाजिर हूं और ढेर सारी बातें कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि लैंगिक हिंसा किशोर रव्य के लिए ये क्यों मायने रखती है, आज हम इस टॉपिक, इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए आज हम मुद्दे की बात करते हैं, लैंगिक हिंसा संदर्भ तय करना। लैंगिक हिंसा में एक सबसे प्रचलित मानव अधिकार उल्लंघन है। इसकी कोई सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सीमाएं नहीं होती। ये पीड़ितों के स्वास्थ्य, गरिमा, सुरक्षा और उनकी छवि पर प्रहार करती है, या यूं कह लीजिए कि उनको नुकसान पहुंचाती है। इसके प्रभाव बहुयामी होते हैं। शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक, यद्यपि पुरुष और महिलाएं दोनों ही अपने सामाजिक लिंग की वजह से हिंसा का सामना कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक लिंग आधारित कठोर विभेद तथा समान शक्ति संबंधों की वजह से महिलाओं व लड़कियां इनके प्रति खास तौर से असुरक्षित होती हैं। महिलाओं की श्रेणी के अंदर भी अनेक सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की वजह से किशोरियां एक विशेष असुरक्षित समूह होती हैं। आशा करता हूं कि आप जो है लैंगिक हिंसा को भली बातें समझ पा रहे हैं, और फिर भी हम चाहेंगे कि आपको हम लैंगिक हिंसा की परिभाषा बताएं। लैंगिक हिंसा की क्या परिभाषा होती है? श्रोताओं, किसी हानिकारक कृत्य के लिए एक सामाजिक शब्द जो किसी व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ उसके साथ किया गया हो और पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से आरोपित लैंगिक अंतरों पर आधारित हो, उसे हम लैंगिक हिंसा कहते हैं। तो ये थी परिभाषा, जहां पुरुष और लड़के विशेषकर यौन हिंसा के प्रति असुरक्षित हो सकते हैं, वहीं पुरुषों और लड़कों की तुलना में महिलाओं और लड़कियों पर यौन हिंसा का अधिकार अधिक प्रभाव पड़ता है। लैंगिक हिंसा शब्द इन प्रकार के कृत्यों के लैंगिक आयान रेखांकित करता है। दूसरे शब्दों में, समाज में महिलाओं के निम्न स्तरीय दर्जे तथा हिंसा के प्रति उनकी बढ़ी हुई असुरक्षित दशा के बीच संबंध है। तो आप भली भांति जान चुके हैं कि लैंगिक हिंसा क्या होती है। किसी हानिकारक कृत्य के लिए एक सामूहिक शब्द जो किसी व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ उसके साथ

किया गया हो और जो पुरुष तथा महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से आरोपित अंतरों पर अधिकारित हो। अब हम ये बात करेंगे कि कौन कौन सी अवस्था है, कौन कौन सी एज है जिसमें किस प्रकार से महिलाएं हिंसा का शिकार होती हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप तक एक गीत पहुंचाएं, एक नगमा पहुंचाएं और उसके बाद हम हाजिर होंगे और आपसे बातचीत करेंगे। और फिर से एक बार हम चाहेंगे कि हम अपना वो दो माध्यम आप तक पहुंचाएं जिसके ज़रिए से आप इस कार्यक्रम के बारे में फीडबैक दें या इस प्रकार के कार्यक्रम आप जब भी सुनते हैं तो उसके बारे में भी आप हमें जानकारी दे सकते हैं। सुनो शारदा 90.8 FM पर आप बने हुए हैं साकिब के साथ और वो दो माध्यम जिसके जरिए से आप अपना फीडबैक और राय प्रतिक्रिया देते हैं वो है फोन और ईमेल एड्रेस। हमारा फोन नंबर है 01204060205 यानी 01204060205 एंड हमारा ईमेल एड्रेस है 90.8fm@sharda.ac.in इट मीन्स 90.8fm@sharda.ac.in। तो श्रोताओं आइए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और हम बात करेंगे कि किस किस अवस्था में महिलाओं पर किस प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं, किस प्रकार से हिंसा किए जाते हैं, किस प्रकार से यौन हिंसा किए जाते हैं। तो आइए लेते हैं एक ब्रेक।

वेलकम बैक। म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साकिब शेख। श्रोताओं, बहुत सारी बातें हम ब्रेक पे जाने से पहले कर चुके हैं। जैसा कि हमने बताया कि आज हम बात कर रहे हैं लैंगिक हिंसा के संदर्भ में, और इस कार्यक्रम में हम क्या क्या चीजें शामिल करने जा रहे थे स्टार्टिंग में हमने वो भी बताया। ब्रेक पे जाने से पहले हम परिभाषा बात कर रहे थे कि लैंगिक हिंसा जो है शब्दों में या यूं कह लीजिए कि असल वाक्यों में किसे कहते हैं, और हमने वादा किया था कि ब्रेक पे आने के बाद हम आपसे बातचीत करेंगे कि वो कौन कौन सी अवस्था है जिसमें हम लैंगिक हिंसा को देखते हैं, या यूं कह लीजिए कि जीवन चक्र के दौरान लैंगिक हिंसा कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जन्म से पहले यानी जब भ्रूण में बच्चा होता है उस वक्त उनके ऊपर किस तरह से अत्याचार किए जाते हैं, या फिर उस महिला को जो गर्भवती है उस पर किस तरह से हिंसा किया जाता है। जेंडर आधारित लिंग चयन चीन, भारत, कोरिया, गणतंत्र, गर्भावस्था के दौरान पिटाई, महिलाओं पर भावात्मक और शारीरिक प्रभाव, भावी शिशु पर प्रभाव और अत्याचारों के कारण गर्भधारण, उदाहरण के लिए युद्ध में सामूहिक बलात्कार, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। हम आपको बता दें, सबसे पहले हमने क्या कहा कि चीन और भारत, कोरिया, गणतंत्र जो ये डेवलपिंग कंट्रीज है, जो ये विकासशील देश है, उनमें जो गर्भावस्था के दौरान अक्सर देखा जाता है कि इन देशों में महिलाओं पर बहुत बड़ा अत्याचार किया जाता है, उनको पिटाई की जाती है, और जिसकी वजह से काफी प्रभाव पड़ते हैं उनके शरीर के ऊपर, काफी प्रभाव पड़ जाते हैं। और जो एक बहुत स्वस्थ बच्चे को जन्म देने वाली महिला होती है, जिसके दिमाग का विकास बहुत अच्छा होना होता है, लेकिन वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसे, उस महिला के ऊपर बहुत बड़े बड़े अत्याचार किए जाते हैं जब वो गर्भ अवस्था में होती है। अत्याचार के कारण गर्भधारण, उदाहरण के लिए युद्ध में सामूहिक बलात्कार इत्यादि इसमें बहुत ज्यादा शामिल है। इन सारे देशों में ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन युद्ध के समय की बात करें तो अभी तो ये चीजें नहीं है, लेकिन हाँ, जब भी ये चीजें होती हैं तो महिलाओं के ऊपर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई एक समूह दूसरे समूह से युद्ध करता है तो वो उसकी महिलाओं के ऊपर टारगेट करता है और उसकी महिलाओं का शोषण करते हैं। अब बात यहाँ पर ये समझ में नहीं आती कि अगर आपका युद्ध किसी एक देश से है, किसी एक समुदाय से है, किसी एक अलग समाज से है, तो इसमें महिलाओं का क्या दोष है, आप क्यों उनको टारगेट करते हैं। खैर, ये बात है। फिर शैशव गुण की बात हम करें तो कन्या हत्या, भावात्मक तथा शारीरिक दुर्व्यवहार, बालिका शिशुओं में भोजन उपलब्धता तथा चिकित्सा देखभाल के मामले में भेदभाव होते हैं। अब इनको हम अगर विस्तार से बात करें तो देखा जाता है कि ज्यादातर लोग असामाजिक तत्वों को अपनाते हैं और क्या करते हैं कि महिलाओं को, कन्याओं को गर्भ में ही मार देते हैं, कन्या हत्या कर देते हैं, या फिर कन्या अगर पैदा हो जाती है, यानी लड़की के रूप में अगर आपके घर में कोई आता है तो आप सोचते हैं कि काफी सारा दहेज देना पड़ेगा, काफी सारा जो है हमारा खर्चा होगा इसकी शादी में, तो इससे बेहतर है कि इससे निपटारा किया जाए या इसे इसी वक्त जो है खत्म कर दिया जाए। ज्यादातर तो यही देखा गया है कि जब महिला गर्भवती होती है उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और उसके बाद पता करवाते हैं कि इसके गर्भ में जो है बालक है या बालिका है। बालिका है तो वो उसकी हत्या गर्भ में ही कर दी जाती है, और बालक है तो वो सेफ है। तो ये तो सबसे बड़ा हमारे समाज की विडंबना है, या यूं कह लीजिए कि हमारे समाज में ये बहुत बड़ी कुकृति है। और यौन उच्छेदन की बात करें तो अक्सर ये देखा जाता है कि महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा, खास तौर से किशोरियों के ऊपर ये बहुत बड़ा जो है अत्याचार है। आपने अक्सर सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा और बहुत सारे समाचार में सुना होगा, आपने न्यूज स्टेशन पे यानी रेडियो स्टेशन पे, टीवी पे आपने ये सुना होगा कि आज जो है एक किशोरी के साथ उसके घर वालों ने अत्याचार किया, या उसके चाचा ने, उसके पड़ोसियों ने अत्याचार किया। तो महिलाएं, या यूं कह लीजिए कि ये किशोरियां जो हैं, ये जो लड़कियां हैं, ये कहाँ पर सेफ हैं? आप किन से बात कर रहे हैं? आप अपने समाज के उन वर्ग से बात कर रहे हैं जो आपके समाज को एक विकास की ओर ले जा सकता है, लेकिन आप उसमें बाधा डाल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप एक नाबालिग उम्र की, कम उम्र की लड़की के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनका यौन शोषण कर रहे हैं। मेरा मतलब आपसे मतलब ये नहीं कि आप जो हमें सुन रहे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आपसे भी यही मतलब है कि आप अगर सुन रहे हैं और आपके समाज में ये हो रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है और आप ये जानते हैं, इसका मतलब आप भी इसमें शामिल है अगर आप खामोश हैं तो। इसीलिए यहाँ पे हम
आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम में और भी बहुत सारी बात करेंगे, जैसा कि अभी हमने बाल कन्या हत्या और भावात्मक और शारीरिक दुर्व्यवहार के बारे में बात की, और बालिका शिशुओं में अब हम बात करेंगे भोजन उपलब्धता तथा चिकित्सा के देखभाल के मामले में हम भेदभाव के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं एक और गीत। गीत के बाद हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए आप अपने सामुदायिक रेडियो पे, यानी सुनो शारदा 90.8 FM पर।

एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आपका होस्ट साकिब शेख, और आज हम बात कर रहे हैं लैंगिक हिंसा के बारे में, और खास तौर से उत्पीड़न के बारे में, और खास तौर से अत्याचारों के बारे में, और वो अत्याचार जो महिलाओं के ऊपर, किशोरियों के ऊपर और कम उम्र की लड़कियों के ऊपर किए जाते हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कन्या हत्या के बारे में, बात कर रहे थे भावात्मक तथा शारीरिक दुर्व्यवहार के बारे में, बात कर रहे थे, और हमने वादा किया था कि बालिका शिशुओं से भोजन उपलब्धता तथा चिकित्सा के देखभाल के मामले में भेदभाव के बारे में हम बात कर रहे थे। तो श्रोताओं, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम आपसे साझा करना चाहते हैं कि हमने कहा था कि आपसे हम ये बातें तो करेंगे, लेकिन आप भी अपने समाज में देख रहे होंगे कि ज्यादातर जो ये किशोरियां होती हैं, यानी मेरा कहने का मतलब है कि आपके घर में अगर एक लड़का है एक लड़की है, दोनों के भोजन में बिल्कुल अलग प्रकार का भेदभाव होता है। अगर लड़का है तो उसे अच्छा खाना देंगे, लड़कियां हैं तो उसे खराब खाना देंगे, या यूं कह लीजिए कि बासी खाना दे देंगे, या यूं कह लीजिए कि रात का बचा हुआ खाना उसके लिए होता है। दूसरी चीजें क्या भेदभाव होती है कि न्यूट्रिशन वैल्यू जो लड़कों को दी जाती है वो लड़कियों के लिए नहीं। अक्सर देखा जाता है कि दूध फल ये सब चीजें लड़कों के लिए स्पेशली इंतजाम किए जाते हैं, कहते हैं ये तो कुल का दीपक है, और लड़कियों के लिए इन चीजों का अभाव होता है, या यूं कह लीजिए अगर बच गया तो ठीक है, नहीं तो लड़कियों को जूठन होता है, या यूं कह लीजिए कि जो बचा हुआ खाना होता है उसके ऊपर हमेशा निर्भर रहना पड़ता है, या फिर खाने की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती। तो किशोरियों के साथ ये अक्सर भेदभाव हमारे देश में पाया जाता है, ये हमारी सामाजिक विडंबना है, हमारे समाज की बनावट है, इस सच्चाई से हम भाग नहीं सकते। लेकिन इसके समाधान है, क्यों नहीं है, बिल्कुल हम इससे दूर जा सकते हैं, हम इस बुराई को खत्म कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने ये कहा कि आप ही अत्याचारी हैं, अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको ही संबोधित कर रहे थे, क्योंकि आप समाज का हिस्सा हैं। आप अगर समाज के अंदर किसी अत्याचार को होते हुए देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस अत्याचार में शामिल हैं, या फिर आप जो हैं उस अत्याचार के हिस्सा हैं अगर आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। कहते हैं कि रोकने की कई सारी सीमाएं होती हैं, अगर आप बलि नहीं हैं, अगर आप बलि हैं तो अपनी ताकत से उसे रोक दीजिए, बलि नहीं है तो कम से कम आप जो है किसी न्यायालय या फिर पुलिस स्टेशन का सहारा लेकर उसे आप रोक सकते हैं। अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो कम से कम आप अपने मन से उसको बुरा तो कह ही सकते हैं। ये बहुत तुच्छ और बहुत ही छोटा सा एक उदाहरण है जिसके जरिए से आप अपने आप को समाज में यूं कह सकते हैं कि आप अपने आप को उस व्यक्ति के अंदर नाप सकते हैं कि आपके अंदर भी इंसानियत बाकी है। तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे बालिका शिशुओं में भोजन के बारे में जो भेदभाव किए जाते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से चिकित्सा की देखभाल में भी भेदभाव होते हैं, यानी अगर आपके घर में लड़का और लड़की दोनों मौजूद हैं तो आपने ये देखा होगा, अक्सर ही आपने, या फिर आपके घर में नहीं तो आप अपने पड़ोस में समाज में ये देखा होगा कि दोनों के बीच अक्सर भेदभाव। अगर लड़कियां बीमार पड़ती हैं तो लड़कियों को जल्दी डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता, या यूं कह लीजिए कि लड़कियों को जो है सही चिकित्सा से महरूम रखा जाता है, या यूं कह लीजिए कि लड़कियों को अक्सर देखा जाता है कि उसे जो है घरेलू दवाओं से सरोकार करना पड़ता है, या फिर आसपास के वैद्य या फिर झोला छाप डॉक्टर को ज्यादा से ज्यादा करते हैं, घर वाले आसपास के डॉक्टर्स को बुला देते हैं। तो इससे क्या, किन चीजों पर असर पड़ने वाला है? बार बार मैं यही कह रहा हूं कि इससे जो है हमारे समाज के ऊपर असर पड़ने वाला है। तो चिकित्सा में भेदभाव, अगर आप कहते हैं कि लड़कों को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के से दिखाया जाए, अगर उसे कोई परेशानी आती है, शारीरिक व्यवहार में कोई परेशानी आती है, शारीरिक बदलाव में कोई परेशानी आती है, तो आप फटाक से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि अरे बाप रे मेरे लड़के को ये हो गया। हल्का सा पेट में दर्द हो या आँख में दर्द हो तो आप अपने लड़के को लेकर बड़े मेडिकल में भागते हैं, लेकिन वहीं अगर किशोरी या लड़कियों की बात आती है तो आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि उनके साथ भेदभाव करते हैं, झोला छाप डॉक्टर का इस्तेमाल करते हैं, या अपने घर में कोई दवा रखी होगी या गलत सलत दवा उठाकर उनको दे देते हैं, या फिर आप यूं करते हैं कि घरेलू कहते हैं ये तो खान पान से ठीक हो जाएगा। खान पान भी आप सही ढंग से कहाँ देखभाल कर पाते हैं, उनको तो खान पान का भी सही आपने भागीदारी नहीं बना रखा है, उनको हक ही नहीं देते आप। तो ये बात हम कर रहे हैं कि आपके समाज में, हमारे समाज में ये अत्याचार हो रहे हैं, खास तौर से लड़कियों के ऊपर कन्या हत्या किया जाता है उनका, और शारीरिक दुर्व्यवहार, अगर गलती से लड़कियां पैदा हो जाए तो उसके आस पड़ोस जैसे कि
जानवर के रूप में उनसे पेश आते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। बालिका शिशुओं से भोजन उपलब्धता में आप भेदभाव करते हैं, चिकित्सा में भेदभाव करते हैं, और अगर उसके साथ कोई ऊंच नीच हो जाती है तो आप उसे बिल्कुल समेटने की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। अरे बाप रे, बेटी है, अगर ये समाज जान गया तो उनकी शादी नहीं होगी। आप पुलिस के पास उनको न्याय दिलाने के लिए नहीं ले जा पाते हैं। क्यों? ये सब चीजें हमारी कुरीतियों में शामिल है, हमारे समाज की कुरीतियों में शामिल है। तो ये बात हम कर रहे हैं कि आज हम जीवन चक्र के दौरान लैंगिक हिंसा के बारे में, कौन कौन सी जीवन चक्र है, जन्म से पहले क्या क्या चीजें हैं, और शैशव गुण में क्या क्या लैंगिक हिंसा हमारे समाज में पाए जाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बालिकाओं का बचपन। अब उस अवस्था में कौन कौन सा जो अत्याचार हम अपने समाज में देखते हैं या हम अपने घरों में देखते हैं। हम तो डायरेक्ट बात करना चाहते हैं कि हम अपने घरों में इन चीजों को देख पाते हैं, लेकिन हम इतने बेशरम हैं कि हम उसे रोक नहीं पाते। खैर, फिलहाल प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। श्रोता, ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है आप हमें दो माध्यम से बता सकते हैं, यानी फोन नंबर के जरिए से और ईमेल के जरिए से। और आप हमें फोन करेंगे 01204060205 पर, यानी 01204060205, एंड आप हमें 90.8 FM@sharda.ac.in यानी इंटरनेट के माध्यम यानी ईमेल के माध्यम से भी आप हमें फीडबैक या फिर राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो आइए लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साकिब शेख। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, जैसे जन्म से पहले जो है हम, चलिए हम सबसे पहले बताते हैं कि आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आज हम स्मार्ट के सौजन्य से, यानी सुनो शारदा पर यह कार्यक्रम आप स्मार्ट के सौजन्य से सुन पा रहे हैं, और जीवन चक्र के दौरान जो लैंगिक हिंसा है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और आज हम बात कर रहे हैं खासतौर से महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में, यानी लैंगिक हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं। तो जन्म से पहले क्या क्या अत्याचार हो रहे थे ये भी हमने बातचीत की। शैशव गुण क्या, कन्या हत्या, भावात्मक और शारीरिक दुर्व्यवहार, बालिका शिशुओं से भोजन उपलब्धता और चिकित्सा देखभाल के मामले में भेदभाव के बारे में हमने ब्रेक पे जाने से पहले बातचीत की। अब बालिकाओं का बचपन जो होता है, जब बालिकाएं छोटी होती हैं, उसके ऊपर किस प्रकार से भेदभाव है, या यूं कह लीजिए कि उसके ऊपर लैंगिक हिंसा किस प्रकार से होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बाल शीघ्र विवाह, यौनांग उच्छेदन, पारिवारिक सदस्यों तथा अजनबियों द्वारा यौन दुर्व्यवहार, भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा देखभाल तथा पहुंच से भेदभाव, बाल वेश्यावृत्त इत्यादि। तो आइए एक एक करके इस विषय को हम, तथा चिकित्सा देखभाल तथा पहुंच से भेदभाव, बाल वेश्यावृत्त इत्यादि। तो आइए एक एक करके इस विषय को हम कवर करते हैं। बाल शीघ्र विवाह की बात करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे देश में भी कई राज्य ऐसे हैं, जैसा कि शुरुआत में हमने ये कहा था कि कई सारे ऐसे देश है, जैसे भारत है, चीन है, कोरिया है और अफ्रीका है, इन सारी डेवलपिंग कंट्रीज में जो ऐसा होता है कि लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते हैं। तो हमारे देश में, अगर हम अपने देश की बात करें, तो बाल विवाह का जो चलन है बहुत ही जोरों पर अभी भी है। हालांकि हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन हमारे कई सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें बाल विवाह बहुत चरम पर है। जैसे कि इनमें सबसे ज़्यादा जो है बात आती है वो है उत्तर प्रदेश है, बिहार है और ख़ासतौर से राजस्थान और हरियाणा है। तो ये दोनों राज्य, राजस्थान और हरियाणा, सबसे ऊपर जो कहेंगे कि अगर इस दर्जे में आते हैं तो सबसे ऊपरी दर्जे में ये दोनों राज्य आते हैं, जहां बाल विवाह जैसी कुरीतियां बहुत ज़्यादा हमारे समाज में पाई जाती हैं। तो इसको रोकथाम के लिए हम किसी न किसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन आज हम आपको ये आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समाज में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं पाई जा रही हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बाल विवाह का मतलब ये होता है कि बच्चों की किशोर अवस्था में ही बच्चियों की शादी कर दी जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर उसके बुद्धि का विकास होना होगा तो वो नहीं हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? क्योंकि उसे आगे जाके उसकी पढ़ाई रोक दी जाएगी और उसे ससुराल में कई प्रकार से अपने जो परिवार है उसका बोझ उठाना पड़ता है, चूल्हा चौका है, घर के काम काज है, या फिर यूं कह लीजिए कि जो औरतें हैं जो बाल अवस्था में ही शादी हो जाती है, जिन लड़कियों की, वो अपने ससुराल में जाती है तो उनको वक्त कहाँ मिल पाएगा कि वो पढ़ पाएंगे या फिर कुछ ऐसे कार्य कर पाएंगे जिससे उनका विकास हो सके या उनके बुद्धि का विकास हो। उनका बुद्धि का विकास तो वहीं पे रुक गया जब उनकी शादी हो गई। अब उस अवस्था में अगर उसका गर्भ धारण हो जाता है, या यूं कह लीजिए

कि बच्चा होने वाला होता है, तो फिर अब वो उसका हमेशा उसी पर ध्यान रहेगा। किस प्रकार से उस कच्ची सी उम्र में उसके सेहत पर प्रभाव पड़ेगा, उसके दिमाग पर प्रभाव पड़ेगा, उसके शारीरिक बनावट पर प्रभाव पड़ेगा, उसके बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं जिस पर बहुत सारे प्रभाव पड़ने हैं। तो जो ये कुरीति है यानी बाल विवाह है, वो समाज का हमारे कड़वा सच है और इसे हमें मान लेना चाहिए और हम इसे देखते भी हैं और हम इसे रोक नहीं पाते। अब बात करते हैं यौनांग उच्छेदन की, बात करते हैं। कई सारे हमारे राज्य हैं जिसमें इस प्रकार के कल्चर हैं कि लड़कियों का खतना किया जाता है। मैं इस बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आप अगर समझदार हैं, आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप गूगल पर इसके बारे में जान सकते हैं कि कई सारे ऐसी कुरीतियां जो हमारे समाज में है और जो इस प्रकार की अवस्था को अपनाते हैं, जैसे लड़कियों का खतना के बारे में, तो उनकी क्या सोच है। उनकी बस एक ही सोच है कि लड़कियों के ऊपर जो है कोई ऐसा दुर्व्यवहार ना हो या लड़कियों का जो है कोई यौन शोषण ना करने पाए। तो ये बहुत ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि अत्याचार जैसी बातें। आप उस बालिका के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और हमने ये कहा था कि हम बतलाएंगे आपको कि अजनबियों के द्वारा किस प्रकार से यौन दुर्व्यवहार किए जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो है कोई लड़की अगर कभी बाहर निकली है तो पांच लड़के खड़े होकर उसको क्या करते हैं, उसको एव टीजिंग करते हैं या फिर उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या फिर उसका दुपट्टा खींच लेते हैं या फिर उसके साथ कई सारे ऐसे कार्य करते हैं जो समाज के लिए उचित नहीं है। फिर वही समाज आ गया और फिर वही उचित वाली बात है। जब ये समाज के लिए उचित नहीं है तो ये फिर हमारे समाज में हो ही क्यों रहा है। खैर छोड़िए, इन पहलुओं पर हम बातें नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि अजनबियों द्वारा यौन दुर्व्यवहार किस प्रकार से किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि स्कूल जाती लड़कियों को रास्ते में रोककर उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ या यौन उत्पीड़न हुआ या उनके साथ कोई अत्याचार हुआ। तो ये चीजें शामिल हैं हमारे समाज में, ये देखा जाता है। ये इससे हम गुरेज नहीं कर सकते या यूं कह लीजिए कि उसका निपटारा हम बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं, हम मौन हैं, हम खामोश हैं, हम इन चीज़ों को रोक नहीं पा रहे हैं। श्रोताओ दोस्तों, और अब ये घड़ी जो है हमें ये इशारा कर रही है कि इस कार्यक्रम को हमें यहीं पे विराम देना चाहिए और अगले कार्यक्रम के लिए हमें बढ़ना चाहिए। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि आज दी गई जानकारी के बारे में आप हमें कुछ न कुछ तो बताइए, या फिर आप भी इस कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं तो आप हमें वो दो माध्यम से, अभी थोड़ी देर में हम आपको वो दो माध्यम बताने जा रहे हैं जिसके जरिए से आप हमें फीडबैक या फिर अपनी जानकारी या फिर अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तब तक आप अपना फोन या फिर डायरी निकाल लीजिए, तब तक हम आपसे बताते हैं कि आज हमने कार्यक्रम में क्या क्या बातें की हैं। आज हम इस कार्यक्रम में खासतौर से लैंगिक हिंसा के शुरुआत के लिए क्यों मायने रखती है। उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस कार्यक्रम का लाभ उठाएंगे, अपने समाज में इन कुरूतियों को रोकने की कोशिश करेंगे और सुनो शारदा के माध्यम से, सुनो शारदा के सहयोग से आप अपने समाज में जो है आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह की अगर कोई चीजें आपके समाज में पाई जाती हैं तो आप जो है बेधड़क होकर हमारे इस सुनो शारदा से संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी सहायता करेंगे। और श्रोताओं, हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो संस्था है उसके बारे में बात की थी, ब्रेक थ्रू एक संस्था, मानव अधिकार संस्था, उसके बारे में बात किया था। तो जाते जाते हम थोड़ा सा उनके बारे में एक बार फिर से बता दें, जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा और भेदभाव को समाप्त करने के लिए काम करती है। कला, मीडिया, लोकप्रिय संस्कृत और सामुदायिक भागीदारी से हम लोगों को एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करते हैं जिसमें हर कोई समानता और न्याय के साथ रह सकते हैं। इन सब के बारे में एक संस्था है जो ब्रेक थ्रू है, वो भी कार्य करता है। तो अगर आप चाहें तो इनके साथ भी संबंध बनाकर अपने समाज में हो रही कुरीतियों को रोक सकते हैं। और हमने आपसे ये भी कहा कि आप सुनो शारदा के माध्यम से सुनो शारदा को भी संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे मिलकर इस कुरीतियों को मिटाने में सफल हो सकते हैं। हम इसके बारे में अलग से प्रोग्राम बना सकते हैं, हम इसके बारे में रीच आउट कर सकते हैं अलग अलग संस्थानों को और अलग अलग एनजीओज को। तो आप सुनो शारदा के माध्यम से ज़रूर जुड़िए और इन बातों पर ख्याल रखते हुए आगे बढ़िए। तो आज हमने इसमें खास तौर से लैंगिक हिंसा का संदर्भ तय करना और जीवन चक्र के दौरान लैंगिक हिंसा किस प्रकार से होती है, खास तौर से जन्म से पहले और शैशव गुण और बालिकाओं का बचपन, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। और हम बालिकाओं के बचपन के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे अगले कार्यक्रम में, और किशोर अवस्था के बारे में भी हम अगले कार्यक्रम में बात करेंगे। फिलहाल तो हमने आपसे ये कहा कि आप हमें जो है अलविदा कहिए और
अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिए। अरे हाँ, माफ कीजिएगा, वो दो माध्यम तो हमने बताए नहीं जिसके जरिए से आप हमें संपर्क करेंगे, अपनी राय प्रतिक्रिया फिर फीडबैक देंगे। हमारा वो दो माध्यम है 01204060205, यानी हमारा फोन नंबर है। फोन नंबर एक बार फिर से सुनिए 01204060205, और हमारा ईमेल एड्रेस है 90.8fm@sharda.ac.in। वंस अगेन वुड लाइक टू रिपीट फॉर यू, 90.8fm@sharda.ac.in। और अब इसके साथ ही साकिब शेख को दीजिए इजाजत, बने रहिए आप अपने सामुदायिक रेडियो पे। नमस्कार।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम, तुम,
2: तुम, तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: Hi, this is Sharmili Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: ताज़ा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहे।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देते हैं। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.
4: फिर माँ क्या कहती थी?
5: कहती क्या थी, बस काजल का टीका माथे पर लगाकर बलैया लेती थी कि उसके लाडले को किसी की नजर न लग जाए।
4: जानते हैं बाबूजी, श्याम सावरे भी अपनी माँ से ऐसा ही पूछा करते थे।
5: क्या?

0: बिल्कुल ठीक जवाब दिया यशोदा मैया ने। अब समझ में आया कि मुझ पे भी मेरी रूपा की कजारी आंखों का ही रंग चढ़ गया है।
1: जी बाबूजी, क्यों झूठा दोष देती है मुझे?
0: इसमें झूठ क्या है? जब देखो भूखती रहती हो मुझे। तुम्हें तो जादू डाला है मुझ पे।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कौशल बोध। यह पुस्तक व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि पुस्तिका पर आधारित है।
2: पृष्ठ संख्या 103, भाग 3, मानव सेवाओं में कार्य करना। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ बच्चे मानव सेवाओं पर कार्य कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 104, मानव सेवा का तात्पर्य है लोगों की सहायता करना और उनके साथ विभिन्न तरीकों से संवाद स्थापित करना। मानव सेवाओं में कार्य करने पर आधारित परियोजनाएं आपको ये सीखने में सहायता करेंगी कि लोगों के साथ कैसे काम करना है। आप अपने परिवार और अन्य लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित परियोजनाओं का चयन कर सकते हैं। आप विभिन्न विषयों पर रोचक वीडियो और

0: ऑडियो क्लिप बना सकते हैं, जैसे कि अपने परिवार के लिए बजट बनाना, लोगों के हाथों पर मेहंदी लगाना या एक कॉमिक बुक बनाना। ये आप पर निर्भर है कि आप अपने साथियों के साथ क्या कल्पना करते हैं। इस खंड में परियोजनाओं के दो उदाहरण दिए गए हैं। आपको केवल एक परियोजना ही चुननी होगी। आप इनमें से किसी एक परियोजना का चयन कर सकते हैं अथवा अपने शिक्षक की सहायता से अपनी पसंद की परियोजना तैयार कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 105, परियोजना 5, विद्यालयी संग्रहालय। यह परियोजना संग्रहालयों के विषय में आपकी जानकारी या समझ समृद्ध करने में सहायक होगी और आप कलाकृतियों को एकत्र करके और उनका वर्णन करके अपना स्वयं का संग्रहालय बनाएंगे। परियोजना पर कार्य करने के पश्चात आप इन कार्यों को करने में सक्षम होंगे। संग्रहालयों तथा कलाकृतियों को जानने में, किसी स्थल संग्रहालय या आभासी संग्रहालय वर्चुअल का अवलोकन करने में, अपना स्वयं का इतिहास जानने में, कलाकृतियों को पहचानने और प्रस्तुतियां तैयार करने में, कलाकृतियों की प्रदर्शनी का आयोजन करने में, आगंतुकों से प्रतिपुष्टि लेने में। चित्र 5.1, विद्यालयी संग्रहालय स्थापित करना। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ छात्र छात्राएं एक विद्यालयी संग्रहालय स्थापित कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 106, आपने सामाजिक विज्ञान में इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए कई स्रोतों के बारे में सीखा है। इन स्रोतों में मानव द्वारा बनाई गई कलाकृतियां अथवा वस्तुएं हैं जो पुरानी, अनोखी और सुंदर हैं। ये हमारी परंपराओं और संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। ये कलाकृतियां प्राचीन हो सकती हैं या वर्तमान में हमारे जीवन और समाज का हिस्सा हो सकती हैं। संग्रहालय वो स्थान है जिसमें कलाकृतियां रखी जाती हैं। अपने इतिहास और संस्कृति को समझने में संग्रहालय हमारी सहायता करते हैं। चित्र 5.1, उनसे हमें पता चलता है कि प्राचीन लोग क्या पहनते थे, किस तरह का काम करते थे, वे किस तरह की कलाकृतियां बनाते थे, पेंटिंग और मूर्तियां, और उन्होंने क्या लिखा, पांडुलिपि आदि। संग्रहालय हमें अपने मन में अतीत को संजोने और उन वस्तुओं को देखने में सहायता करते हैं जिन्हें हम अन्यथा कभी नहीं देख पाते। संग्रहालय हमें देश और दुनिया के विभिन्न समूहों के लोगों की वर्तमान संस्कृति और कार्य के बारे में जानने में भी सहायता करते हैं। वे कला, परंपराओं, वास्तुकला और विज्ञान से संबंधित कलाकृतियां प्रदर्शित करते हैं। चित्र 5.2, भारत में स्थित राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र अथवा संग्रहालय हमें उन वस्तुओं के बारे में जानकारी देते हैं जो वस्तुएं अब अस्तित्व में नहीं हैं, जैसे डायनासोर। संग्रहालय उन वस्तुओं के विषय में भी जानकारी देते हैं जिनकी हम भविष्य में अपेक्षा कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ अनोखी वस्तुएं भी हैं जो हमारी सोच या जानकारी से परे हैं, जैसे कि दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में पानी पर घूमने वाली 1200 किलोग्राम की ग्रेनाइट गेंद। चित्र 5.2, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित जनजातीय संग्रहालय में विभिन्न जनजातियों की पारंपरिक कला, शिल्प और संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ दो चित्र दिए गए हैं जिनमें भोपाल में स्थित जनजातीय संग्रहालय में विभिन्न जनजातियों की पारंपरिक कला, शिल्प और संस्कृति को दिखाया गया है। पृष्ठ संख्या 107, जहाँ विज्ञान संग्रहालय मुख्य रूप से विज्ञान से संबंधित अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं सामान्य संग्रहालय विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्रदर्शित करते हैं जिनमें पारंपरिक वस्त्र और उनको पहनने की शैली सम्मिलित होती है। कुछ संग्रहालयों में जानवरों के अवशेषों को संरक्षित करके प्रदर्शित किया जाता है। क्या आपके घर में पारंपरिक वस्तुएं हैं जिन्हें संग्रहालय में प्रदर्शित किया जा सकता है? उन्हें अपने आसपास ढूंढिए और कक्षा में लाइए। यदि आप इन कलाकृतियों को कक्षा में नहीं ला सकते हैं तो उनकी तस्वीरें या चित्र ले लीजिए और इन्हें अपने विद्यालयी संग्रहालय का हिस्सा बनाएं। चित्र 5.3 किसामा हेरिटेज विलेज में ओपन एयर संग्रहालय है जिसमें नागालैंड की विभिन्न जनजातियों के घर प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें प्रत्येक घर का एक अनोखा डिजाइन है। मैं क्या कर पाऊंगा, मैं क्या कर पाऊंगी, परियोजना कार्य करने के पश्चात आप इस पृष्ठ पर लिखित कार्य करने में सक्षम होंगे। एक, आप ये वर्णन कर पाएंगे कि संग्रहालय इतिहास और परंपराओं को कैसे संरक्षित करते हैं। दो, उन कलाकृतियों की पहचान कर सकेंगे जो आपके और आपके साथियों के लिए रुचिकर हों। तीन, अपने साथियों के साथ एक विद्यालयी संग्रहालय बना पाएंगे। चार, प्रस्तुति के विभिन्न रूपों का उपयोग करके कलाकृतियों का इतिहास प्रस्तुत कर पाएंगे। मुझे किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? बिंदु एक, स्थानीय रूप से एकत्रित कलाकृतियां या उनके चित्र जो पुराने एवं सुंदर या आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण हो। बिंदु दो, भंडारण डिब्बे और प्रदर्शन डिब्बे। बिंदु तीन, सफाई ब्रश और कपड़ा। बिंदु चार, लेबल बनाने के लिए चार्ट पेपर या कार्ड। पृष्ठ संख्या 108। बिंदु पांच, मार्कर, स्केच पेन, ड्राइंग पेंसिल, कलर पेन और कैंची। बिंदु छह, प्रस्तुतिकरण के लिए कंप्यूटर और प्रोजेक्टर। बिंदु सात, अन्य उपकरण और सामग्री। मैं स्वयं और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखूं? बिंदु एक, हमारी विरासत हमारे गौरव और सम्मान का स्रोत है। इसे संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। कलाकृतियों का ध्यान रखा जाना चाहिए और उन्हें किसी भी तरह की क्षति से बचाने के लिए संजोकर रखना चाहिए। बिंदु दो, किसी संग्रहालय की यात्रा के दौरान कलाकृतियों से सीधे संपर्क करने से बचें, क्योंकि वे संवेदनशील सामग्री से बनी हो सकती हैं। बिंदु तीन, कृपया संग्रहालय में लगे निर्देश पट्ट पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन कीजिए। आपने सामाजिक विज्ञान में सिंधु सरस्वती सभ्यता के विषय में पढ़ा है। आपने धौलावीरा चित्र 5.4 के विषय में भी पढ़ा है। भारत के मानचित्र पर धौलावीरा स्थान को खोजिए। पुरातात्विक स्थल ऐसे स्थल हैं जहां प्राचीन मानव जीवन के साक्ष्य संरक्षित हैं। इन स्थलों की खुदाई पुरातत्वविदों द्वारा की जाती है। वे इन स्थलों की सावधानी पूर्वक खुदाई करते हैं और जो कलाकृतियां एवं अन्य अवशेष सामने आते हैं उनका विश्लेषण करते हैं। ये कलाकृतियां हमें ये समझाने में सहायता करती हैं कि इन स्थलों पर कई वर्षों पहले किस प्रकार की सभ्यताएं अस्तित्व में थीं। खुदाई के दौरान प्राप्त वस्तुओं को स्थल के निकट स्थित संग्रहालय में रखा जाता है। चित्र 5.4, किले के पूर्वी द्वार पर प्रहरी कक्ष, धौलावीरा। यहाँ एक चित्र है जिसमें धौलावीरा स्थित किले के पूर्वी द्वार पर प्रहरी कक्ष दर्शाया गया है। आरंभ करने से पहले मुझे क्या जानने की आवश्यकता है? अपने घर और आसपास में ध्यान से देखिए। उन पांच कलाकृतियों की सूची बनाएं जो आपको रोचक लगती हैं, क्योंकि वे आपके लिए या आपके परिवार के लिए पुरानी या विशेष हैं। उदाहरण के तौर पर पुराने सिक्के, टेलीफोन, बर्तन, टिकट, लकड़ी की नक्काशी, फर्नीचर, पत्थर की नक्काशी, शिलालेख, पत्थर या गुफाओं अथवा इमारतों की दीवारों पर खुदे हुए लेख, प्राचीन एवं धार्मिक पांडुलिपियां, मूर्तियां, रेडियो, ग्रामोफोन, कैमरा, चश्मे, लकड़ी की लाठी, प्राचीन पुस्तकें, पारंपरिक वस्त्र इत्यादि। पृष्ठ संख्या 109। गतिविधि एक, संग्रहालय का भ्रमण करना। संग्रहालय भ्रमण करने से आपको अपने विद्यालय में संग्रहालय स्थापित करने में सहायता मिलेगी। यदि आप स्वयं किसी संग्रहालय का भ्रमण करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप अपने मित्रों या अन्य लोगों से पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने संग्रहालय का भ्रमण किया है और भ्रमण के दौरान उन्होंने क्या देखा। आप किसी संग्रहालय की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और वहां प्रदर्शित प्राचीन चीजों का अवलोकन कर सकते हैं। संग्रहालयों के विवरण पर ध्यान दीजिए। कुछ संग्रहालयों में आभासी अथवा वर्चुअल संग्रहालय भ्रमण। आप भारत के संग्रहालयों का आभासी भ्रमण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर कर सकते हैं। इसे इंटरनेट पर खोजने के लिए संस्कृति मंत्रालय जमा वर्चुअल म्यूजियम जैसे शब्दों का उपयोग कीजिए। चित्र 5.5 भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित वेबसाइट का स्क्रीन ग्रैब दिया गया है। संग्रहालय की संग्रहित सामग्री पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गूगल लेंस या ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन यानी OCR का उपयोग कीजिए। इसके साथ ही आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि गूगल लेंस ने टूर के दौरान आपकी किस प्रकार से सहायता की। इंटरनेट सुरक्षा। इंटरनेट का उपयोग करते समय अपने शिक्षक से सहायता लीजिए। सावधान रहें कि कुछ भी अपलोड या डाउनलोड न करें, साथ ही व्यक्तिगत जानकारी भी किसी के साथ साझा न करें। पृष्ठ संख्या 110। संग्रहालय का भ्रमण करते समय संग्रहालय के लेआउट और प्रमुख प्रदर्शनियों को ध्यानपूर्वक देखिए एवं समझने का प्रयास कीजिए। संग्रहालय के बारे में जानने, प्रदर्शनियों का अवलोकन करने, सूचना पट्ट पढ़ने और जांचने के लिए पर्याप्त समय लीजिए। ये भी देखिए कि क्या वहां सहभागी गतिविधियां हो रही हैं, जैसे प्रदर्शनियों के कुछ हिस्सों को उजागर करना, कुछ हिस्सों को हिला डुला कर देखना या कोई प्रश्नोत्तरी जिसमें आप भाग ले सकते हैं आदि। यदि संभव हो तो अपने अवलोकन की चर्चा किसी विशेषज्ञ जैसे संग्रहालय की कलाकृतियों आदि की देखभाल करने वाला व्यक्ति, क्यूरेटर या स्थानीय इतिहासकार आदि के साथ कीजिए और अपने प्रश्न पूछिए। दी गई जानकारी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. संग्रहालय में आपने सबसे रोचक प्रदर्शनी कौन सी देखी? खाली स्थान। 2. आपको ये प्रदर्शनी रोचक क्यों लगी? खाली स्थान। 3. एक ऐसी प्रदर्शनी का वर्णन कीजिए जिसका हमारे जीवन में आज भी महत्व बना हुआ है। खाली स्थान। गतिविधि 2. अपने परिवार और क्षेत्र का इतिहास जानिए। आरंभ करने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप जिस स्थान पर रहते हैं और संबंधित परिवार की गतिविधि के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। दिए गए प्रश्न इसमें आपकी सहायता करेंगे। 1. क्या आपके गांव या कस्बे या शहर का कभी कोई दूसरा नाम था? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 111। 2. क्या आप जानते हैं कि शहर की स्थापना कब हुई थी? यदि हां तो वर्ष लिखिए। खाली स्थान। 3. आपका परिवार मूल रूप से कहां से आया था? खाली स्थान। 4. क्या आपकी कोई पारिवारिक परंपराएं या रीति रिवाज हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं? खाली स्थान। 5. क्या गांव या कस्बे या शहर से जुड़ी कोई स्थानीय कहानियां या परंपराएं हैं? उदाहरण के लिए क्षेत्र के बारे में कोई कहानी, इतिहास से कोई संबंध, वर्ष का कोई भी समय जब बहुत से लोग घूमने आते हैं आदि। अपने गांव या कस्बे या शहर से जुड़ी कहानी या परंपरा के बारे में लिखिए। खाली स्थान। 6. क्या आपके गांव, शहर या कस्बे में कोई ऐतिहासिक स्मारक स्थल या इमारतें हैं यदि हाँ तो उनमें से किसी एक के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खाली स्थान, पृष्ठ संख्या 112। सात, क्या आपने कोई पुराना संस्थान या स्मारक देखा है? यदि हाँ तो ये क्यों प्रसिद्ध है? खाली स्थान। आठ, आपके घर में सबसे पुरानी कलाकृतियां कौन सी हैं? उनके नाम लिखिए। खाली स्थान। गतिविधि तीन, कलाकृतियों को पहचानना और उनके बारे में जानना। अपने घर में कम से कम 5 कलाकृतियों की पहचान कीजिए और उनके बारे में तालिका 5.1 में लिखिए। तालिका 5.1, कलाकृतियों का विवरण। प्रश्न, कलाकृति 1, कलाकृति 2, कलाकृति 3, कलाकृति 4, कलाकृति 5। कलाकृति क्या है? खाली स्थान। इसका स्वामी कौन है? खाली स्थान। ये कितनी पुरानी है? खाली स्थान। क्या आप इसे कक्षा में लाएंगे या इसका कोई चित्र लाएंगे? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 113। ध्यान दीजिए, यदि आप कक्षा में चित्र लाने की योजना बना रहे हैं तो सुनिश्चित कीजिए कि आप इन चित्रों को विभिन्न कोणों से लें, ताकि चित्रों को देखने वाला कोई भी व्यक्ति कलाकृति को ऐसे देख सके जैसे वो उसके सामने हो। गूगल लेंस का उपयोग करना। आप AI टूल जैसे गूगल लेंस का उपयोग कर वस्तुओं और स्मारकों या स्थलों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस स्मार्टफोन कैमरा को उन पर इंगित करना होगा। गूगल लेंस कलाकृतियों, ऐतिहासिक कलाकृतियों और प्रसिद्ध स्थलों के बारे में भी जानकारी प्रदान कर सकता है, जिससे हमें अपनी कला और संस्कृति के बारे में अधिक जानने का अवसर मिलता है। संग्रहालयों के आभासी भ्रमण अथवा वर्चुअल टूर से पुराने टिकट अर्थात स्टाम्प और सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कई अन्य ऐप भी उपलब्ध हैं। आप संग्रहालय में प्रदर्शित की गई किसी कलाकृति को चुन सकते हैं, उसके इतिहास और विकास को दिखाते हुए एक काल क्रम बनाइए जिसमें ये सम्मिलित हो कि इसका आम तौर पर कब उपयोग किया जाता था और यदि अभी भी इसका उपयोग हो रहा है तो कैसे किया जा रहा है। आप इससे जुड़ी किसी महत्वपूर्ण घटना का विवरण भी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि किसी रिश्तेदार ने इसे दादा दादी की शादी के अवसर पर उपहार के रूप में दिया था और ये गांव में अपनी तरह की पहली वस्तु थी, जैसे एक पुराना रेडियो या कैमरा। चित्र 5.6, पुरानी पीतल की घंटियां। यहां एक चित्र दिया गया है जिसमें पुरानी पीतल की 2 घंटियां प्रदर्शित की गई हैं। गतिविधि 4, संग्रहालय के लिए कलाकृतियों का चयन करना। आप अपने सभी साथियों के साथ मिलकर 5 कलाकृतियों का चयन कीजिए जो संग्रहालय में प्रदर्शनी का हिस्सा होंगी। आपको ये चयन सावधानी पूर्वक करना होगा और ये भी बताना होगा कि आपने इन कलाकृतियों को क्यों चुना और अन्य को क्यों नहीं। चित्र 5.7, 1950 के दशक का पुराना चल स्त्री यानी ट्रैवलिंग आयरन जो बिजली से संचालित होती थी। पृष्ठ संख्या 114। चित्र 5.8, पुराने रेलवे लालटेन। यहां एक चित्र में पुराने रेलवे लालटेन प्रदर्शित किए गए हैं। चित्र 5.9, 1998 के वर्ष का मोबाइल फोन। यहां एक चित्र में 1998 के वर्ष का एक मोबाइल फोन प्रदर्शित किया गया है। सभी कलाकृतियों का अपना महत्व है, भले ही आपकी कलाकृति प्रदर्शनी के अंतिम चरण में सम्मिलित ना हो, लेकिन आप स्थानीय इतिहास और संस्कृति के बारे में जानेंगे। ये प्रश्न आपको कलाकृतियों को अंतिम रूप देने में सहायता करेंगे। एक, आप प्रदर्शनी के लिए अंतिम 5 कलाकृतियों का चयन कैसे करेंगे? कलाकृति चुनते समय आप किन कारकों को ध्यान में रखेंगे? खाली स्थान। चित्र 5.10। 1960 के दशक की शुरुआत के कैमरा, फ्लैश और लेंस। यहाँ एक चित्र में 1960 के दशक की शुरुआत के कैमरा, फ्लैश और लेंस प्रदर्शित किए गए हैं। चित्र 5.11। 1940 के दशक की पीतल की छलनी। यहाँ एक चित्र में 1940 के दशक की पीतल की छलनी प्रदर्शित की गई है। पृष्ठ संख्या 115। पुराने दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट को पढ़ना या अनुवाद करना। गूगल लेंस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, एडोब स्कैन और टेक्स्ट फेरी जैसे सभी AI टूल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी OCR का उपयोग करके छवियों से शब्द या पाठ यानी टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। आप उनका उपयोग पुराने दस्तावेजों को पढ़ने के लिए कर सकते हैं जिन्हें पढ़ना कठिन है। इसके साथ ही दस्तावेजों का उस भाषा में अनुवाद करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं जिसे आप समझते हैं। चित्र 5.12। अनुवाद के लिए AI टूल का उपयोग। यहाँ एक चित्र है, इसमें अनुवाद के लिए AI टूल का उपयोग करना समझाया गया है। यदि आप विद्यालयी संग्रहालय की कलाकृतियों में पुराने दस्तावेजों को सम्मिलित करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सहायक होगा। एक, स्मार्टफोन पर गूगल ऐप डाउनलोड कीजिए और खोलिए। दो, सर्च बार में गूगल लेंस आइकन ढूंढिए और उस पर क्लिक कीजिए। ये गूगल लेंस को सक्रिय यानी एक्टिव करता है। तीन, अपने कैमरे को उस पाठ्य सामग्री की ओर इंगित कीजिए जिसे आप पढ़ना चाहते हैं। बेहतर परिणामों के लिए सुनिश्चित कीजिए कि पाठ्य सामग्री स्पष्ट और केंद्र यानी फोकस में हो। पाठ्य सामग्री के जरूरी हिस्से को चयनित करने के लिए हाइलाइटर का उपयोग कीजिए। चार, आपके आवश्यक कार्य के अनुसार पढ़ने के लिए गूगल लेंस स्वचालित रूप से पाठ्य सामग्री को पहचानने और आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित करने का प्रयास करेगा जिससे उसे पढ़ना सुगम हो जाएगा, विशेषकर जटिल स्थितियों जैसे छोटे फॉन्ट में। कॉपी करने के लिए गूगल लेंस पर होमवर्क ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आपको कई विकल्प दिखाई देंगे जैसे कॉपी टेक्स्ट या कॉपी टू कंप्यूटर। पाठ्य सामग्री को अपने क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए कॉपी क्लिक कीजिए। इसके बाद आप इसे नोट्स या दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट जैसे किसी अन्य ऐप में पेस्ट कर सकते हैं। अनुवाद करने के लिए स्क्रीन के निचले भाग में अनुवाद विकल्प देखिए, उस पर क्लिक कीजिए। इसके पश्चात इच्छित भाषा चुनिए जिसमें आप पाठ्य सामग्री का अनुवाद करना चाहते हैं। लेंस अनुवादित पाठ्य सामग्री को मूल पाठ्य सामग्री के साथ प्रदर्शित करेगा। पृष्ठ संख्या 116। आपके द्वारा चुनी गई प्रत्येक वस्तु का एक चित्र बनाइए या एक चित्र चिपकाइए। इस पृष्ठ पर नीचे दी गई तालिका 5.2 में उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या उपयोगिता का संक्षिप्त विवरण लिखिए। तालिका 5.2, पहचानी गई कलाकृतियों का विवरण अंकित करना। वस्तु, चित्र, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उपयोगिता, क्या इसका वर्तमान में भी उपयोग किया जा रहा है? हाँ या नहीं? वस्तु एक, खाली स्थान। वस्तु दो, खाली स्थान। वस्तु तीन, खाली स्थान। वस्तु चार, खाली स्थान। वस्तु पांच, खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 117, गतिविधि पांच, कलाकृतियों को सुरक्षित रखना। चित्र 5.13, 1960 के दशक के टेलीग्राम और टिकट। यहां दो चित्र हैं, इनमें 1960 के दशक के टेलीग्राम और टिकट प्रदर्शित किए गए हैं। जिस तरह एक पीतल की वस्तु को धोकर पॉलिश करने की, लकड़ी की वस्तु को मुलायम ब्रश से साफ करने की आवश्यकता होती है, और कपड़ों को किसी भी कील या नुकीले किनारों से दूर सावधानी पूर्वक लटकाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार चित्रों को सावधानी पूर्वक लिफाफे में ऐसे रखने की आवश्यकता होती है जिससे कि वे मुड़े या खराब न हों और उनका आकार सुरक्षित रहे। इन्हीं दो कलाकृतियों का चयन कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चित्र 5.14, कश्मीर के पीतल का समोवर यानी चाय बनाने का बर्तन। यहां एक चित्र दिया गया है, इसमें कश्मीर का पीतल का समोवर यानी चाय बनाने का बर्तन प्रदर्शित किया गया है। एक, कलाकृतियां सुरक्षित और अच्छी स्थिति में रहें ये सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करेंगे? गतिविधि 6, कलाकृतियों पर प्रस्तुति तैयार करना। प्रत्येक कलाकृति के पीछे एक कहानी होती है और आपको इसे विद्यालयी संग्रहालय आने वाले प्रत्येक आगंतुक के सामने प्रस्तुत करना होगा। आप इसे कई तरीकों से प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कलाकृति के बारे में कोई लोक कथा बता सकते हैं या स्वयं इसके विषय में एक कहानी विकसित कर सकते हैं। आप वीडियो भी बना सकते हैं, विशेषकर उन वस्तुओं की जिन्हें आप विद्यालय नहीं ला सकते हैं, या किसी व्यक्ति का साक्षात्कार कर सकते हैं जो वस्तु के ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानकारी दे। डिजिटल स्लाइड बना सकते हैं। चित्र 5.15, पुनर्चक्रित ऊन और कपड़े से बना एक पुराना हस्त निर्मित पंखा जिसका उपयोग सभी घरों में बिजली पहुंचने से पहले किया जाता था। यह एक चित्र दिया गया है, इसमें हाथ के पंखे को प्रदर्शित किया गया है। पृष्ठ संख्या 118, ब्लॉग या विकिपीडिया लेख लिख सकते हैं या कलाकृति का वर्णन करने के लिए चार्ट और कलर पेन का उपयोग करके पोस्टर तैयार कर सकते हैं। इन प्रश्नों पर सोचिए और उत्तर दीजिए। एक, आप किस तरह की प्रस्तुति देंगे, जैसे डिजिटल स्लाइड प्रस्तुति, पोस्टर, वीडियो आदि। खाली स्थान। दो, आपने इस प्रस्तुति का चयन क्यों किया, खाली स्थान। तीन, आपकी प्रस्तुति की विशिष्टताएं क्या हैं, जैसे पोस्टर का आकार, वीडियो की अवधि आदि। खाली स्थान। आगंतुकों को प्रदर्शित करने से पहले अपने समूह में कलाकृति का मौखिक वर्णन देने का अभ्यास कीजिए। चित्र 5.16, विद्यालय के संग्रहालय में शैक्षिक खिलौनों का ऐतिहासिक महत्व दर्शाया गया है। यह एक चित्र है, इसमें विद्यालय के संग्रहालय में शैक्षिक खिलौनों के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 119, स्वयं की प्रस्तुति का अनुवाद करना। ऐसे कई AI टूल हैं, जैसे भाषणी अनुवाद और गूगल अनुवाद, जिनका उपयोग अन्य भाषाओं में ऑडियो प्रस्तुतियां तैयार करने के लिए किया जा सकता है। भाषणी अनुवाद। भाषणी अनुवाद AI टूल का एक सेट है जो बोले गए शब्दों का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकता है। ये भारतीय भाषाओं में अनुवाद, प्रतिलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन और लिप्यंतरण यानी ट्रांसलिट्रेशन करने में सहायता करता है। ये उपयोगकर्ताओं को अपनी पसंदीदा भारतीय भाषाओं में संचार करने, जानकारी तक पहुंचने और सामग्री बनाने में सक्षम बनाता है। गूगल अनुवाद। गूगल अनुवाद एक टूल है जो अंग्रेजी के शब्दों, वाक्यांशों और वेब पेजों का तुरंत 100 से अधिक अन्य भाषाओं में अनुवाद करता है। यहां एक टेबल दी गई है जिसमें दो कॉलम हैं, भाषिणी अनुवाद, गूगल अनुवाद। भाषिणी अनुवाद, चरण एक, भाषिणी पर पहुंचिए। अपने कंप्यूटर या टैबलेट पर एक वेब ब्राउजर खोलिए, सर्च बार में भाषिणी टाइप कीजिए और एंटर दबाइए। उपकरण तक पहुंचने के लिए भाषिणी वेबसाइट लिंक पर क्लिक कीजिए। चरण दो, अपनी भाषा चुनिए, उस अनुभाग की तलाश कीजिए जो आपको भाषाएं चुनने की सुविधा देता है। भाषिणी कई भाषाओं का अनुवाद कर सकती है, इसलिए वो चुनिए जिसे आप बोलना चाहते हैं और जिसका आप अनुवाद करना चाहते हैं। चरण तीन, अपनी पाठ्य सामग्री यानी टेक्स्ट लिखिए। एक ऐसा स्थान ढूंढिए जहां आप अपना वाक्य टाइप कर सकें या बोल सकें। यदि आप टाइपिंग में अधिक सहज हैं तो कीबोर्ड का उपयोग कीजिए। यदि आप बोलना चाहते हैं तो सुनिश्चित कीजिए कि आपके डिवाइस में माइक्रोफोन हो और माइक्रोफोन आइकन खोजिए। चरण चार, अनुवाद कीजिए और सुनिए। एक बार जब आप अपना पाठ लिख लेंगे तो अनुवाद बटन पर क्लिक कीजिए। यदि आप वॉइस इनपुट का उपयोग कर रहे हैं तो भाषिणी द्वारा आपके बोले गए शब्दों को तैयार यानी प्रोसेस होने तक प्रतीक्षा कीजिए। इसके बाद भाषिणी आपको स्क्रीन पर अनुवादित पाठ दिखाएगी। यदि उपलब्ध हो तो आप स्पीकर आइकन पर क्लिक करके अनुवादित संस्करण भी सुन सकते हैं। चरण पांच, प्रयोग और अन्वेषण कीजिए। विभिन्न वाक्यों और भाषाओं के प्रयोग से न डरें। भाषिणी के साथ प्रयोग करके देखिए कि ये विभिन्न स्थितियों में कैसे काम करता है। उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का अन्वेषण कीजिए, जैसे भाषा की दिशा बदलना या सेटिंग समायोजित करना। गूगल अनुवाद, चरण एक, गूगल अनुवाद पर पहुंचिए। अपने कंप्यूटर या टैबलेट पर एक वेब ब्राउजर खोलिए, सर्च बार में गूगल ट्रांसलेट टाइप कीजिए और एंटर दबाइए। टूल तक पहुंचने के लिए गूगल ट्रांसलेट वेबसाइट लिंक पर क्लिक कीजिए। चरण दो, अपनी भाषा चुनिए। भाषिणी के समान मूल भाषा यानी जिस भाषा का अनुवाद करना है और लक्षित भाषा यानी जिस भाषा में अनुवाद करना है चुनिए। चरण तीन, अपनी पाठ्य सामग्री यानी टेक्स्ट लिखिए। वो वाक्य टाइप कीजिए या बोलिए जिसका आप अनुवाद करना चाहते हैं। गूगल अनुवाद में वॉइस इनपुट के लिए एक माइक्रोफोन आइकन भी उपलब्ध है। चरण चार, अनुवाद कीजिए और सुनिए। अनुवादित पाठ देखने के लिए अनुवाद बटन पर क्लिक कीजिए। आप स्पीकर आइकन पर क्लिक करके भी अनुवाद सुन सकते हैं। चरण पांच, अतिरिक्त सुविधाओं का अन्वेषण कीजिए। गूगल ट्रांसलेट वार्तालाप मोड जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करता है जो आपको आगे और पीछे अनुवादित वार्तालाप करने की अनुमति देता है। चरण छह, अभ्यास कीजिए और आनंद लीजिए। वाक्यों का अनुवाद करने का अभ्यास कीजिए और ये जानने का आनंद लें कि ये टूल भाषाओं की दुनिया को कैसे विस्तृत कर सकते हैं। गतिविधि सात, कलाकृतियों की प्रदर्शनी का आयोजन करना। पृष्ठ संख्या 120, गतिविधि सात, कलाकृतियों की प्रदर्शनी का आयोजन करना। प्रदर्शनी दिवस। चित्र 5.17 एकत्रित कलाकृतियों का प्रदर्शन। यहाँ एक चित्र है जिसमें एकत्रित कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया है। पृष्ठ संख्या 121। एक, आप अपने साथियों के साथ शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यालय में कला शिल्प की प्रदर्शनी आयोजित कर सकते हैं। विद्यालय के परिसर में एक उपयुक्त तारीख और स्थान निर्धारित कीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि चयनित स्थान उचित प्रदर्शनी और आगंतुकों के लिए पर्याप्त हो। दो, संग्रहालय के लिए 5 कलाकृतियों की देखभाल की जिम्मेदारी लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर काम कीजिए। प्रत्येक कलाकृति के संक्षिप्त विवरण पर चर्चा करके उसे अंतिम रूप दीजिए। अंतिम विवरण को उचित ढंग से सूचक पत्र पर लिखिए। चर्चा कीजिए कि ये सूचक पत्र किस प्रकार लगाए जाएंगे, डिस्प्ले बोर्ड पर या कलाकृतियों के पास चार्ट पर। तालिका 5.3। तीन, टेबल स्टैंड और डिस्प्ले बोर्ड को व्यवस्थित कीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि कलाकृतियां सुरक्षित रूप से प्रदर्शित और चिह्नित की गई हों। चार, प्रदर्शनी को बढ़ावा देने के लिए पोस्टर, फ्लायर्स और सोशल मीडिया पोस्ट बनाइए। पांच, माता पिता, परिवार, दोस्तों, स्कूल स्टाफ और समुदाय के सदस्यों को निमंत्रण भेजिए। अपने दोस्तों और परिवार को भी आमंत्रित कीजिए। छह, कलाकृतियों की प्रदर्शनी का आयोजन निर्धारित समयानुसार कीजिए और आगंतुकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों से प्रतिपुष्टि प्राप्त कीजिए ताकि ये समझा जा सके कि क्या अच्छा हुआ और क्या सुधार की आवश्यकता है। तालिका 5.3। वस्तुओं को संक्षेप में वर्णित करने के सूचक पत्र यानी लेबल। वस्तु, सूचक पत्र पर विवरण। वस्तु एक, खाली स्थान। वस्तु दो, खाली स्थान। वस्तु तीन, खाली स्थान। वस्तु चार, खाली स्थान। वस्तु पांच, खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 122। कलाकृतियों को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा, इसका लेआउट दिखाने के लिए एक रेखाचित्र बनाएं। यहाँ खाली स्थान दिया गया है, इसमें आप कलाकृतियों को दिखाने के लिए एक रेखाचित्र बना सकते हैं। अपनी प्रस्तुति से संबंधित प्रतिपुष्टि और टिप्पणियों, प्रदर्शित कलाकृतियों और अन्य सुझावों के लिए एक आगंतुक पुस्तिका रखिए। मैंने दूसरों से क्या सीखा। यदि आप किसी संग्रहालय का भ्रमण करने गए थे तो पता लगाएं कि संग्रहालयों में कलाकृतियों को कैसे संग्रहित किया जाता है और कैसे उनकी देखभाल की जाती है। संग्रहालयों द्वारा उपयोग की जाने वाली कम से कम 3 विधियां लिखिए। क, खाली स्थान। ख, खाली स्थान। ग, खाली स्थान। विशेषज्ञों से सीखें। किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित कीजिए जो आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके। उदाहरण के लिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो संग्रहालय में काम करता हो, कोई इतिहासकार या पुरातत्वविद। अपनी कक्षा के साथ ऐतिहासिक कलाकृतियों पर चर्चा करने के लिए कम से कम 3 बातें लिखिए जो आपने सीखी। कलाकृतियों पर लघु वृत्तचित्र संवाद कार्यक्रम यानी टॉक शो सुनिए और जानिए कि कैसे ये कलाकृतियां हमें प्राचीन काल में लोगों के जीवन को समझने में सहायक होती हैं। पृष्ठ संख्या 123। कम से कम 3 बातें लिखिए जो आपने सीखी हों। एक, खाली स्थान। दो, खाली स्थान। तीन, खाली स्थान। आगंतुकों से सीखना। आगंतुकों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के कोई 3 उदाहरण लिखिए। एक, खाली स्थान। दो, खाली स्थान। तीन, खाली स्थान। इस प्रतिपुष्टि से आपने क्या सीखा। खाली स्थान। मैंने क्या कार्य किया और इसमें कितना समय लगा। ये समझना महत्वपूर्ण है कि किसी गतिविधि को पूरा करने में कितना समय लगता है। गतिविधि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 समयावधि अर्थात कालांश। यह एक समय रेखा दी गई है, इसमें गतिविधियों और उनकी समयावधि को दर्शाना समझाया गया है। प्रत्येक गतिविधि पर आपने लगभग कितना समय व्यतीत किया इसकी गणना कीजिए, उन्हें समय रेखा पर चिन्हित कीजिए। यदि आपने पुस्तिका में सुझाई गई गतिविधियों से अधिक गतिविधियां की हैं तो उन अतिरिक्त गतिविधियों की संख्या और उनके लिए व्यतीत समय को भी जोड़िए। पृष्ठ संख्या 124। मैं और क्या कर सकता हूं, मैं और क्या कर सकती हूं। विभिन्न शहरों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के साथ परियोजना पर चर्चा कीजिए। उनसे अपने घर या क्षेत्र में उपस्थित संग्रहालय में रखी कुछ कलाकृतियों के बारे में जानकारी साझा करने या बताने के लिए कहिए। अपनी कक्षा में वस्तु या चित्र लाकर उन्हें प्रदर्शित कीजिए। सोचिए और जवाब दीजिए। 1. आपको क्या करने में आनंद आया। 2. आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 3. आप क्या अलग करना चाहेंगे। 4. संग्रहालय हमें अपनी विरासत और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने में कैसे सहायता करते हैं। 5. परियोजना से संबंधित अन्य कौन सी नौकरियां हैं। आसपास का अवलोकन कीजिए, लोगों से बात कीजिए और अपना उत्तर लिखिए। आपके द्वारा किए गए कार्य से संबंधित नौकरियों के कुछ उदाहरण हैं पुरातत्वविद, इतिहासकार, संग्रहालय क्यूरेटर और टूर गाइड आदि। इसके साथ ही 5वां अध्याय समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कौशल बोध। ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, वाचन स्वर मुइनुल हुसैन, निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
2: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: एफएम सुनो शारदा।

धरती मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 28वीं कड़ी मौसम मौसम लवली मौसम। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने जाना कि मानसून का मतलब बारिश नहीं होता। हर मानसून में बारिश भी नहीं होती। हर मानसून के पीछे कुदरत की कई क्रियाएं काम करती हैं। तो लीजिए आगे सुनते हैं विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 28वीं कड़ी मौसम मौसम लवली मौसम।

0: अरे सृष्टि, ओ सृष्टि।
1: जी मम्मी।
0: ये नल तो बंद कर ना, पानी बह रहा है कब से।
1: अच्छा।
0: और सुन, वो मानव को तो आवाज लगा, सुबह से न जाने क्या कर रहा है छत पे।
1: अरे करेगा क्या मम्मी, छत पर आज बहुत सारी पतंगे आ रही हैं, बस उन्हें इकट्ठा कर रहा होगा।
0: ओ, तो आज भी उसका लवली लवली मौसम है।
1: हाँ मम्मी, सुबह से उसने 5 पतंगे जो इकट्ठी कर ली हैं।
2: अरे भाई, किसके लिए आज मौसम लवली लवली है। अरे हमें तो सुबह से आज चाय भी नहीं मिली है।
0: मैं बस उसी की तैयारी कर रही हूँ।
2: अरे वसुधा।

0: जैसा कि तुमने कहा, मैंने बगीचे का सारा कबाड़ आज साफ कर दिया है। पिछले हफ्ते तो सुबह सुबह ही इतनी गर्मी हो गई थी कि कुछ भी काम करने का मन नहीं किया। तो अब चाय।
1: ओ, तो मानव की तरह आप भी आज खुश हैं?
0: अरे भाई, मौसम ही ऐसा है बेटा।
2: मानव बड़ा खुश है। क्या बात है मानव, ये 5 पतंगों की करामात है।
0: नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, ये मौसम की करामात है। अब मैं बगीचे की सफाई करने की 1 महीने से सोच रहा था, पर मूड नहीं बन रहा था। और आज सुबह सुबह ही उठकर मैंने देखा मौसम इतना बढ़िया है, तो सारा बगीचा भी साफ कर दिया।
1: अरे वाह, कीजिए आपकी चाय।
0: थैंक यू, यू आर सो स्वीट वसुधा।
1: हाय आप।
0: अरे वाह वाह वाह, आज देखो आपकी मम्मी भी बहुत खुश लग रही है। कल कैसे गुस्सा हो रही थी।
3: अरे पापा,
2: कल आपने देखा ही होगा कि कितनी गर्मी थी, ऊपर से बिजली नहीं। ऐसी गर्मी में आपको चूल्हे के सामने खड़ा होकर खाना बनाना पड़े तो क्या होगा।
0: हाँ वैसे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये मौसम हमारे तन मन भावनाओं सबको प्रेरित करता है।
1: आखिर ये मौसम है क्या भला? पापा के मूड की तरह, वो जब अच्छा होता है तो कई दिनों तक अच्छा रहता है, और खराब हो जाए तो कई दिनों तक खराब रहता है।
4: तब तो मम्मी का मूड मौसम है और पापा का जलवायु।
0: मुझे क्यों बती रहे हो भाई? वैसे एक तरीके से तुम बच्चे ठीक ही कह रहे हो। जब मौसम बदलता है तो लोगों का मूड बदलता ही है, पर मौसम इतिहास भी बदल देता है।
2: वो कैसे?
0: बच्चों, भारत का इतिहास गवाह है कि शेरशाह ने हुमायूं को हराने में मौसम की भी भरपूर मदद ली थी।
5: और जानते हो बच्चों, हुमायूं ने शेरशाह के बिहार के विद्रोह को दबाने के लिए आक्रमण किया, तो शेरशाह बंगाल की ओर भागता रहा। उसके पीछे हुमायूं भी बंगाल आ गया, तो वहाँ वर्षा हो रही थी।
0: हाँ, और गंगा नदी में भयंकर बाढ़ आने से दिल्ली जाने के सभी रास्ते बंद हो गए।
2: अच्छा।
0: पर हुमायूं वहीं डेरा जमाए रहा, और तब शेरशाह अपनी मान से निकला और उसने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। हुमायूं को हार का मुंह देखना पड़ा, खुद भी अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचा पाया। और सब जानते हैं कि वो गंगा में कूद पड़ा और एक भिश्ती ने उसकी जान बचाई।
1: पापा, मैंने सुना है भोपाल में 2 और 3 दिसंबर को एक कारखाने से जहरीली गैस के रिसाव से 2,500 व्यक्तियों की मौत हो गई थी।
0: हाँ बेटा।
1: कुछ विशेषज्ञों का विचार है, उस रात अगर वर्षा होती या तेज हवाएं चलती तो जहरीली गैस या तो पानी में घुल जाती या हवा उसे दूर ले जाती, जिससे उसके प्रभाव अधिक क्षेत्र पर तो होते परंतु इतने घातक नहीं होते।
0: बिल्कुल।
4: और ठंडे मौसम में तो कोहरे के कारण सड़क पर दुर्घटनाएं भी ज्यादा होती है ना पापा?
0: हाँ मानव, पता है एक बार 1952 में लंदन को कोहरे की मोटी मोटी परतों ने ढक लिया और 4 दिन तक ढके रहा।
2: अच्छा।
0: हाँ, और जब कोहरा छटा तो 4,000 के लगभग लोगों की मौत हो चुकी थी।
4: पापा, आप तो बुरे मौसम की बातें करके मुझे भी डरा रहे हैं। आज तो मौसम कितना लवली लवली है।
1: मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, ये मौसम बदले इससे पहले पिकनिक पर निकल चलो।
0: एक मिनट, पहले पूछ तो लो मुझसे।
4: बोलो ना पापा।
0: तो चलो ना भाई।
6: देखो सूर्य प्रकाश, नदी के इस किनारे को हमने पिछले 3 साल में कैसे एक पिकनिक स्थल में बदल दिया है।
0: भाई सुंदर तो बहुत लग रहा है भैया, तुमने सचमुच कमाल कर दिया भैया।
4: नमस्ते
6: नमस्ते बच्चों, नमस्ते।
0: बच्चों, ये है मेरे बचपन के दोस्त डॉक्टर अनुराग।
6: एक बार फिर नमस्ते बच्चों। आओ बच्चों, देखो यहाँ हमने छोटी छोटी कॉटेजेस बना दी है।
0: बड़ी सुंदर है।
6: चलो पहले तुम्हें दिखाऊं कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं।
0: हाँ,
6: आओ बच्चों, आओ, आओ, आओ।
2: मैंने सामान गाड़ी से उतार कर कॉटेज में रख दिया है।
0: और ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अरे सुनो, अरे वो पकौड़े तो देते जाओ जो तुम घर से बनवा के लाए। हाँ,
4: वो तो मैंने हजम कर दिए
0: रास्ते में।
1: और हजम करके ये कागज और एल्यूमिनियम की पन्नी और खाली पानी की बोतल भी यही फेंक दी।
5: मानव, कब अपने आप को बदलोगे?
4: मम्मी
5: देखो यहाँ सब जगह कितनी साफ है, हर जगह हरी भरी है, पास में नदी बह रही है। अगर इस जगह पर सभी तुम्हारी तरह कूड़ा फेंकने लगे तो शाम तक ये सुंदर जगह कूड़ेदान बन जाएगी।
6: अरे भाभी जी, माना को डांटिए नहीं। देखो माना बेटा, वहाँ सामने दो कूड़ेदान रखे हैं।
2: तो उठाओ ये कूड़ा और डाल दो नीले वाले में ये प्लास्टिक की बोतल और अल्मोनियम की पन्नी, और कागज हरे वाले में। चल जा फटाफट। अच्छा।
3: मानव मैं आ गया। अरे मानव, आज यहाँ की सफाई का काम तुमने ले लिया है क्या?
4: अरे गौरव, तू यहाँ? लगता है विवेक भैया ने तुझे पहले ही फोन कर दिया होगा।
3: हाँ हाँ, विवेक भैया ने मुझे पहले ही फोन कर दिया था।
4: गौरव देखो, ये मानव अपनी आते बदलता ही नहीं है।
3: सृष्टि दीदी, मानव हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, पर कभी कभी भूल कर बैठता है।
2: कभी कभी
3: पर मानव, मैंने सुना है कि आज तुमने 5 पतंगे लूटी है। That's great.
2: गौरव कुछ भी कहो, पतंग लूटने का तो मजा ही कुछ और है।
3: और ऐसी खुली हवा में पतंग उड़ाने का मजा ही कुछ और है। भैया यहाँ जगह भी कितनी खुली खुली है ना।
4: सच गौरव, पतंग उड़ाने में मजा आएगा, इसीलिए मैं सारी पतंगे और डोर भी ले आया हूँ।
6: बच्चों पतंग बाद में उड़ाना, पहले कुछ नाश्ता कर लो।
4: नाश्ता?
6: और चाय नाश्ते के बाद मैं तुम्हें यहाँ के वातावरण से अवगत करा दूंगा।
0: वैसे अनुराग, यहाँ तो पूरा वातावरण ही बदल गया है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। हो कई पक्षी भी दिख रहे हैं।
6: हाँ भाई, हम इसे एक जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित कर रहे हैं। हम इस स्थान को एक ऐसे पार्क के रूप में विकसित कर रहे हैं जहाँ लोगों को प्रकृति का नजारा देखने को तो मिले, साथ ही साथ अपने आसपास के वातावरण को भी समझ सके।
2: डॉक्टर अंकल, मैंने सुना है आपके यहाँ मौसम संबंधी आंकड़े इकट्ठा करने के यंत्र भी हैं।
6: ठीक सुना तुमने विवेक, ये सभी उपकरण यहाँ लगे हैं। मौसम विभाग के कर्मचारी भी यहाँ दिन में एक बार आते हैं।
0: तब तो तुम्हें भी मौसम विज्ञान की काफी जानकारी हो गई होगी।
6: हाँ भाई, मैं भी एक शौकिया मौसम वैज्ञानिक हूँ। यहाँ मैं भी आंकड़े इकट्ठे करता हूँ और उनके आधार पर आने वाले मौसम का अनुमान लगाने की कोशिश करता हूँ।
4: यहाँ भी मौसम की बात। अच्छा अंकल, मौसम अच्छा कब और कैसे होता है ये तो मुझे पता चल गया, पर खराब कब होता है?
6: बेटे मौसम कई तरह के होते हैं, जैसे ठंडा या गर्म, सूखा या नम, सुहाना या तूफानी वगैरह वगैरह। परंतु हर मौसम बनता है विभिन्न कारकों की आपसी जटिल क्रियाओं से,
4: और जिनमें शामिल है हवा की गति, दबाव, तापमान, बादलों की उपस्थिति, नमी, हवा।
7: बस बस बस, मानव करने लगा परेशान तू अपने अंकल को। हाँ?
6: अरे नहीं नहीं भाभी, मेरा तो ये शौक है और मुझे ऐसे सवालों का जवाब देना अच्छा लगता है।
1: अगर मैं कहूँ कि वायुमंडल की स्थिति ही मौसम का निर्माण करती है तो क्या ये सही होगा भैया?
2: हाँ सृष्टि, बिल्कुल ठीक होगा। मौसम से संबंधित सभी क्रियाएं तो वायुमंडल की निचली परत यानी क्षोभ मंडल में ही होती हैं, जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर लगभग 10 किलोमीटर है और जो ध्रुवों पर और पतली हो जाती है।
6: ठीक कहा तुमने विवेक। अगर देखा जाए तो मौसम के निर्माण में 3 मुख्य कारक हैं।
4: कौन कौन से?
6: सूर्य, हवा और पानी।
4: अंकल कोई ऐसा तरीका बताओ कि मौसम जैसा आज है वैसा हमेशा बना रहे, यानी लवली लवली।
6: लवली लवली यानी?
4: देखो अंकल, आज सबका मूड कितना अच्छा है और सब खुश भी है। पापा मुझे पढ़ने को भी नहीं कह रहे हैं और आज मम्मी भी घर का काम छोड़कर हमारे साथ आ गई है। क्यों, हुआ ना मौसम लवली लवली?
0: बेटा बेटा, कहीं मौसम एक जैसा नहीं रह सकता, ये कब बदल जाए इसका भी पता नहीं होता। किताब लाया साथ में
4: पापा।
3: हाँ अंकल, तभी एक मौसम वैज्ञानिक ने कहा है तितली के अर्जेंटीना में पंख फड़फड़ाने से ध्रुवों पर हिमखंड गिरने लगते हैं।
6: बेटे इस उदाहरण से वो ये कहना चाहते हैं कि मौसम के निर्धारण की प्रक्रिया कितनी जटिल है, एक छोटी सी घटना कालांतर में किस तरह मौसम को बड़े रूप में प्रभावित करेगी कहा नहीं जा सकता।
2: यानी अभी मौसम के बनने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए।
6: कुछ ऐसा ही समझो।
4: पर अंकल, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो, मौसम बनता और बिगड़ता कैसे है?
6: अरे बेटे, पृथ्वी पर मौसम परिणाम है तापमानों के अंतर का।
4: तापमान में अंतर?
6: हाँ बच्चों, और तापमान में अंतर इस बात पर निर्भर है कि पृथ्वी पर किसी स्थान को सूर्य से प्रति यूनिट कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है।
1: तब तो भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्रों को सबसे ज्यादा ऊष्मा मिलती होगी।
6: लेकिन वहाँ भी सारे क्षेत्र एक जैसे गर्म नहीं होते। भूमध्य रेखा पर सारे क्षेत्र में भूमि नहीं है, वहाँ समुद्र भी है।
2: और समुद्र थल की अपेक्षा कम गर्म होते हैं।
6: हाँ।
2: पर अधिक ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं। सूर्य की रोशनी समुद्र में 600 मीटर तक जा सकती है, पर थल पर केवल कुछ मीटर तक ही।
1: पर थल तो जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म,
4: और पानी ना तो जल्दी गर्म होता है और ना जल्दी ठंडा।
6: तभी जितना तापमानों में अंतर थल पर होता है समुद्र में नहीं।
0: हाँ भाई, साइबेरिया में तापमान -46 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, परंतु समुद्र में कहीं भी इतना कम तापमान नहीं होता।
4: यानी समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए हमेशा मौसम लवली लवली। अरे वाह पापा, हमें भी अपना घर समुद्र में ही बना लेना चाहिए, तब आपका मूड भी हमेशा ठीक रहेगा।
6: सूर्य प्रकाश
2: बहुत बढ़िया मानो, बहुत बढ़िया। अच्छा अंकल, अगर मैं कहूँ कि मौसम को सुहाना और खराब करने में हवा का बड़ा हाथ है, तो क्या ये सही होगा?
6: हाँ, क्योंकि वैसे तो मौसम के निर्माण से जुड़े कई कारण अभी भी ठीक ठीक समझे नहीं गए हैं, परंतु हवा एक मुख्य कारक है।
2: अच्छा,
3: तो क्या स्थायी हवाएं जैसे ट्रेड विंड और अस्थायी व स्थानीय हवाओं का मौसम से गहरा संबंध है?
6: बिल्कुल है बेटे, परंतु इसके लिए तुम्हें पृथ्वी पर जो वायुमंडल के विभिन्न संचरण है उन्हें समझना होगा।
4: लेकिन अगर सबका पेट खाली होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होए।
0: अच्छा जाओ बच्चा, जाओ अपनी मम्मी का हाथ बटवाओ, जाओ जाओ, वो तैयारी कराए, जाओ जाओ।
6: सचमुच मजा आ गया खाने का,
4: पर हमें तो पतंग उड़ाने का मजा ही नहीं आया।
6: क्यों?
3: अरे मानव, पहले हवाओं के बारे में समझ तो लो, फिर उसी हिसाब से पतंग उड़ाना।
6: भाई ऐसी हवाएं जो हमारे मौसम को प्रभावित करती हैं, उन्हें हम तीन वर्गों में रख सकते हैं।
4: कौन कौन सी अंकल?
6: भाई ऐसी हवाएं जिनका संचार पूरे पृथ्वी ग्रह को प्रभावित करता है।
3: कहीं आप ट्रेड विंड यानी व्यापारिक हवाओं की बात तो नहीं कर रहे हैं?
6: हाँ गौरव बेटे, तुमने पृथ्वी का नक्शा तो देखा होगा, है ना? उस पर एक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है,
4: उसे भूमध्य रेखा कहते हैं।
6: हाँ।
4: इस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं।
2: बिल्कुल ठीक मानव, और ये क्षेत्र हमेशा गर्म और नम रहते हैं, और यहाँ हमेशा वर्षा होती रहती है।
6: ठीक कहा तुमने विवेक, पर क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है?
3: अंकल मैं बताऊँ? क्योंकि अंकल यहाँ पर थल और जल दोनों ज्यादा है और दोनों ही गर्म हो जाते हैं।
6: बिल्कुल ठीक, और इस कारण इस क्षेत्र पर जो वायु जल और थल के संपर्क में आती है वो भी गर्म हो जाती है,
4: और गर्म होकर ऊपर उठती है और फैलती है,
6: और ऊपर उठने से वो पुनः ठंडी हो जाती है, और उसमें उपस्थित वाष्प पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है, और इस क्षेत्र में लगभग पूरे साल वर्षा होती रहती है और मौसम नम बना रहता है।
3: तब तो अंकल नीचे यहाँ कम दबाव का क्षेत्र बन जाता होगा।
1: और इस कम दबाव वाले क्षेत्र को भरने के लिए ठंडी हवा उच्च दबाव क्षेत्र से यहाँ पहुँचती होगी, क्योंकि हवा अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर गति करती है,
6: और इसी को हम हवा यानी विंड कहते हैं, और ये पवन यानी की हवा विश्वव्यापी भी हो सकती है, और जैसे व्यापारिक पवने और स्थानीय भी, जैसे जल और थल समीर, है ना?
3: यानी मौसम के मिजाज का पता करना है तो वायुमंडल के दाब का पता कर लो।
6: हाँ बेटे, और जो हवा जिस दिशा से आ रही है उसी के अनुसार मौसम ठंडा गर्म शुष्क या नम होगा।
0: अरे तभी तो हवाओं को उनकी आने की दिशाओं से ही जाना जाता है, जैसे पूर्वा या पछुआ।
1: हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी भी मुझे बताती थी कि पूर्वा हवाएं ठंडी और शुष्क होती हैं और पछवा गर्म तो होती है पर वो शुष्क भी हो सकती हैं और नम भी हो सकती हैं।
4: तब तो अंकल हमें यदि ये पता हो कि पृथ्वी पर कहां कहां उच्च या निम्न दाब क्षेत्र हैं, तो हम वहां के मौसम के बारे में कुछ कुछ अंदाजा लगा सकते हैं।
6: बिल्कुल,
4: पर उच्च और निम्न दाब क्षेत्र से मौसम का क्या संबंध?
2: अरे भाई मानव, मौसम का मतलब वायुमंडल में हलचल, और हलचल तो तभी होगी जब किसी स्थान पर वायु दाब में अंतर हो।
1: हाँ विवेक भैया, दाब में अंतर होने पर हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेंगी।
6: बच्चों, भूमध्य रेखा के क्षेत्रों से हवाएं ऊपर उठकर ध्रुवों की ओर यानी कि उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की तरफ बहेंगी, और ध्रुवों पर जहाँ उच्च दाब है वहाँ से हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ बहेंगी।
0: परंतु ऐसा होता नहीं है।
4: क्यों?
0: क्योंकि भूमध्य रेखा पर हर जगह सूर्य की ऊर्जा अलग अलग मिलती है, और फिर कहीं पानी है तो कहीं जमीन, जो सूर्य की ऊष्मा अलग अलग मात्रा में अवशोषित करते हैं, इसके अलावा रात और दिन आदि कई कारक हैं, और इन सबसे एक और बड़ा कारक है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, जो हवाओं पर कोरियोलिस प्रभाव पैदा करता है, जिससे हवाएं अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने से पहले ही अपना रास्ता बदल लेती हैं, यानी उसकी दिशाओं में परिवर्तन आ जाता है।
1: तो क्या वे गर्म हवाएं ध्रुवों तक नहीं पहुंचती?
6: पहुंची तो है बेटे, परंतु बड़ी जटिल प्रक्रिया से गुजरने के बाद।
4: जटिल प्रक्रिया मतलब?
0: देखो भाई, भूमध्य रेखा पर हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और फैलती है, और 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के पास कुछ हवा नीचे उतर जाती है। यहाँ उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है, परंतु इसकी सारी नमी पहले ही समाप्त हो जाती है, इसलिए इन कम दबाव के क्षेत्रों में मौसम तो शांत होता है, परंतु वर्षा कम या बिल्कुल नहीं होती।
4: शायद तभी अमेरिका का दक्षिण पश्चिम इलाका तथा अफ्रीका का सहारा क्षेत्र कम दबाव क्षेत्र में आता है।
2: मानव, इस बेल्ट को जो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश पर उत्तर और दक्षिण गोलार्ध पर स्थित है, उसे अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। इस अक्षांश पर शेष हवाएं दो भागों में बंट जाती हैं, एक भूमध्य रेखा की ओर चली जाती है और दूसरी ध्रुवों की ओर।
1: जो हवा अश्व अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर वापस आती है, उन्हें व्यापारी हवाएं यानी ट्रेड विंड्स कहते हैं।
2: बिल्कुल ठीक है। इन हवाओं को व्यापारी हवाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले यूरोप के जहाज इन हवाओं के सहारे यात्रा किया करते थे।
6: हाँ बेटे, व्यापारी हवाएं भूमध्य रेखा पर पहुँचने पर एक संवहन चक्र पूरा कर लेती है। इस भूमध्य रेखिक संवहन चक्र को मौसम वैज्ञानिक जॉर्ज हेडले के सम्मान में हेडले चक्र कहा जाता है।
1: पापा, भूमध्य रेखा से क्या सभी हवाएं अश्व अक्षांश क्षेत्र तक सीमित हो जाती हैं?
0: नहीं बेटा, नहीं। भूमध्य रेखा से कुछ हवाएं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों तक पहुंच जाती हैं, और भूमध्य रेखा से आई इन हवाओं को पश्चिमी पवन या प्रतिकूल व्यापारी पवन कहा जाता है।
2: और प्रतिकूल व्यापारी हवा मतलब इनकी दिशा व्यापारी हवा के विपरीत होती है।
1: शायद इन हवाओं का कोई व्यापार करने नहीं आया होगा।
6: व्यापार न सही, लेकिन इनकी गति काफी तेज और स्थायी हवाओं में सबसे अधिक होती है।
1: तेज तो अंकल हमारा मानव भी है, लेकिन वो गति में नहीं खाने में तेज है।
4: हाँ दीदी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मुझे भूख भी लगाई है।
6: अच्छा। लो बेटा, तुम सेब खाओ।
2: हाँ। अंकल, अंकल सेब तो हम भी खाएंगे।
6: अच्छा बच्चो, तुम सब सेब लो, ये लो, ये, ये लो।
0: मैं बच गया भाई।
1: अंकल, हाँ मैंने एक पत्रिका में हवाओं के कुछ विचित्र नाम 50-40 सही से याद नहीं आ रहा, पढ़े तो थे।
2: सृष्टि, मैं बताता हूँ, कहीं तुमने गरजती 40, भयानक 50 और चीखते 60 तो नहीं पढ़े थे?
1: हाँ हाँ भैया, मैंने यही नाम पढ़े थे।
4: लेकिन भैया, ये कैसे विचित्र नाम है?
2: मानव घबराओ नहीं, मैं बताता हूँ। जब पश्चिमी पवन तीव्र गति से बहती हुई 40 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक बनी रहती है, तो इसे गरजती 40 या रोरिंग 40 कहते हैं।
3: लेकिन हवाओं के अन्य नाम कैसे पड़े?
2: पापा आप ही बता दो।
0: अरे बेटा, जब ये पवन 50 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है, तो इसे भयानक 50, फ्यूरियस 50, और 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच होने पर इसे चीखते 60, स्क्रीमिंग 60 कहा जाता है।
1: मुझे तो पता ही नहीं था कि पवन चीखती भी है।
4: अगर हाँ आपने जल और थल समीर को स्थायी पवन बताया था ना?
6: हाँ मानव, जल और थल के ऊष्मा धारिता गुण में भिन्नता के कारण दिन में पवन जल से थल की ओर तथा रात में थल से जल की तरफ चलती है।
3: इसका मतलब है कि दिन में गर्मी से जल के ऊपर दाब की मात्रा थल के दाब से अधिक होती है,
1: और रात में थल के ऊपर अधिक दाब होता है और जल के ऊपर कम, है ना अंकल?
6: हाँ बेटे, ऐसा ही होता है।
4: लेकिन अंकल, पर्वतीय घाटियों में तो दिन और रात दोनों समय मौसम सुहाना होता है।
6: हाँ बच्चों, पर्वतीय घाटियों में सुहाने मौसम के लिए हमें आरोही और अवरोही हवाओं को धन्यवाद देना चाहिए, जो वहाँ के मौसम को खुशनुमा बनाए रखती है।
4: आरोही और अवरोही हवाएं?
2: हाँ
4: विवेक भैया, कहीं ये गणित के आरोही और अवरोही सिद्धांत की बात तो नहीं है?
2: मानव, तू फिर से घबराने लगा।
4: बताओ ना भैया।
2: अरे नहीं, ये आरोही अवरोही तो स्थानीय पवन है।
6: हाँ बच्चों, पर्वतीय घाटियों से पवन का पर्वत की ओर अर्थात ऊपर बहती पवन आरोही पवन कहलाती है, इस प्रकार गर्म होती वायु ऊपर उठती जाती है।
1: अच्छा, इसीलिए दिन में घाटियों में ठंडक रहती है
0: और रात में पर्वत की चोटियाँ

0: घाटियों की तुलना में तेजी से ठंडी होती हैं। इसीलिए रात में चोटी से ढाल की ओर बहने वाली पवन ठंडी होती है और इन्हें अवरोही पवन कहा जाता है।
1: बच्चों
2: अंकल अब बाहर जाकर पिकनिक का मजा भी लिया जाए।
3: हाँ,
2: और बाहर जाकर देखें कि कौन सी हवा चल रही है।
3: हाँ बच्चों, अरे हम तो बताना ही भूल गए बातों बातों में कि बाहर हमने टेंट लगा रखा है।
4: अरे मानव चल बाहर चलकर लवली लवली मौसम का आनंद।
2: क्यों डॉक्टर साहब, बच्चों ने ज्यादा परेशान तो नहीं कर दिया?
5: मम्मी हमने कोई शरारत नहीं की है।
3: भाई बच्चों की मौसम संबंधी जिज्ञासा देखकर तो मेरा मन गदगद हो गया।
2: मम्मी हम तो लवली लवली मौसम में बाहर बातें करने आए हैं।
4: अच्छा अच्छा बैठो बच्चों, जरा हम भी तो सुने तुम्हारी लवली लवली बातें।
6: अरे मानव ऊपर से एक एरोप्लेन जा रहा है।
2: अरे हाँ, मानव चाहे एरोप्लेन में बैठा ना हो लेकिन उसे उड़ते हुए तो देख ही सकता है।
5: अच्छा,
4: अरे बैठना क्या, हो सकता है बड़ा होकर मानव पायलट बने। एरोप्लेन तो क्या जेट विमान भी उड़ाए।
5: अंकल जेट विमान के बारे में सुनकर मुझे जेट प्रवाह का नाम याद आ गया।
3: बच्चों धरती की सतह से लगभग 10 किलोमीटर ऊंचाई पर करीब 160 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहने वाली घुमावदार पवन जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम कहलाती है।
2: ये पवन किस गोलार्ध में चलती है?
7: सृष्टि, जेट प्रवाह दोनों गोलार्ध में होती है।
0: हाँ लेकिन बेटा ये प्रत्येक गोलार्ध के 20 डिग्री से 50 डिग्री पर स्थित उष्ण क्षेत्र और 30 डिग्री से 70 डिग्री के ध्रुवीय क्षेत्रों दोनों में बहती है।
4: अच्छा तो ये जेट प्रवाह वही है ना जिनका गर्मी के दिनों में हिमालय के ऊपर की ओर सरक जाना हमारे देश में मॉनसून का संकेत माना जाता है।
0: बिल्कुल ठीक, मॉनसून भी एक तरह की स्थानीय हवा ही है जिसकी उत्पत्ति महासागरों और महाद्वीपों के ताप में अंतर से होती है।
7: पर ये कोई साधारण घटना नहीं है, मॉनसून तो मौसम की अनेक घटनाओं से संबंधित है।
0: हाँ, पृथ्वी का घूर्णन, पर्वत और अन्य अवरोधों से पवनों की गति मंद हो जाने से मॉनसून प्रभावित होता है।
5: लेकिन ये मॉनसून समय का पक्का नहीं है।
0: हा?
5: कभी 10-20 दिन पहले ही आ जाता है और कभी इतनी बाद में आता है।
4: अरे मानव मॉनसून तो अप्रैल जून से ही बनने लगता है जब उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समीप गर्मी पड़ने लगती है।
2: अच्छा, जब हमारी परीक्षाएं खत्म होती हैं, तब ये मॉनसून अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाता है।
5: परीक्षाएं? भाई मुझे तो बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता है। वो देखो बाहर बादल छा रहे हैं और हवा भी चल रही है, पर मैं तो बाहर जा रहा हूँ।
2: अरे मानव ये जेब में क्या लेकर जा रहे हैं बाहर, बिस्किट है क्या?
5: अरे दीदी बिस्किट नहीं है, बिस्किट का खाली पैकेट है ताकि बाहर जाते समय इसे कूड़ेदान में डाल दूं।
0: अरे वाह वाह वाह वाह, लगता है मानव समझदार हो गया। अब मानव कूड़े को इधर उधर न फेंकने का महत्व समझ गया है।
3: भाई ये तो एक दिन मेरे साथ रहने का नतीजा है। भाई अच्छे आदमी के साथ रहेगा तो अच्छे गुण भी सीखेगा।
0: डॉक्टर साहब, अरे हमें तो लगता है कि आप में अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का गुण आ गया है।
3: भाई कुछ भी कहो पर मेरे लिए आज की पिकनिक मजेदार रही। क्यों बच्चों, सही कहा ना मैंने?
2: हाँ, आज की पिकनिक बड़ी मजेदार रही।
4: भाई साहब आपने पिकनिक को मनोरंजक और शिक्षा प्रद बनाया है
2: और मानव को लवली लवली मौसम के साथ क्लीन क्लीन बॉय भी।

0: धरती मेरी धरती। अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 28वीं कड़ी सुन रहे थे, मौसम मौसम लवली मौसम।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM। सुनो
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जाँच कराए। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूँ कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जाँच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जाँच कराएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: सुनो।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करे और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाँ जी मैडम, किधर चलना है?
2: चले हम शहर घूमने।
1: चलो फिर।

0: हाँ जी मैडम आया मजा या और घूमना?
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.
3: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। जी हां दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर की बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना तो शुरू हो गया है लेकिन अभी भी बहुत से हमारे श्रोताओं के मन में सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि इन सवालों के जवाब भी हम दें। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो परिवार जनों के मन में डर और सवाल रहते ही रहते हैं। खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बातों से लोग उलझन में हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? अब जान लेते हैं इस सवाल का जवाब। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या HPV टीका सुरक्षित है? तो जानते हैं इसका जवाब। जी हाँ बिल्कुल, HPV टीका सुरक्षित माना जाता है। ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। ये सामान्य बातें हैं और आम तौर पर जल्दी ठीक हो जाती हैं। तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? तो इस सवाल का जवाब है, गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, इसलिए अफवाहों पर भरोसा ना करें। अगर कोई चिंता हो तो आशा बहन जी, ANM बहन जी और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CHO या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से बात करें। अब आता है सवाल नंबर 4, ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? तो इसका जवाब है, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को बीमारी आने से पहले सुरक्षा देने के लिए ये टीका लगाया जाता है। सवाल नंबर 5, क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? जवाब है, बिल्कुल नहीं। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है, बांझपन या कमजोरी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। सवाल नंबर 6, क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही हैं? तो इसका जवाब है, हर बात सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही लें। अब बारी आती है सवाल नंबर 7 की, जो कि आखिरी सवाल है, टीका कब और कहां लगेगा? तो इसका जवाब है, इसके लिए अपनी आशा बहन जी, ANM बहन जी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। वो ही आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। ये एक संक्रामक रोग है जो आनुवांशिक नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब, इस रोग की चपेट में आ सकता है। टीबी का 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है। 2 हफ्ते लगातार दवा खाने के बाद बीमारी फैलने का कोई खतरा नहीं रहता। टीबी हाथ मिलाने, शौचालय इस्तेमाल करने, खाना और बर्तन बांटने से नहीं फैलता। आइए टीबी के मरीज से भेदभाव न करें और मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये 5 जूस। वो कौन कौन से 5 जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छान कर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: उस बसंती।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.
1: नहाने के लिए शावर की जगह हमेशा बाल्टी का उपयोग करें। अगर शावर उपयोग भी कर रहे हैं तो छोटे वाले शावर लगवाएं, जिससे पानी की कम खपत हो। शावर का उपयोग न करके हम 40 से 45 लीटर पानी हर एक मिनट में बचा सकते हैं। फ्लश में भी बहुत अधिक पानी उपयोग होता है, इसलिए ऐसा फ्लश लगवाएं जिसमें पानी का फोर्स कम हो। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगी?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित।

राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर एक खास संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएंगे और सही उपचार लेंगे तो यकीन मानिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है।
0: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
0: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
0: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: महावारी के दौरान सामान्य लक्षण, आइए इनके बारे में जानते हैं। सिर दर्द, स्तनों में दर्द, पेट फूलना, ज्यादा पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द या पेड़ू यानी कि पेट के नीचे में दर्द, ये सब महावारी के दौरान दिखाई देते सामान्य लक्षण हैं।
2: यदि महावारी के दौरान आपको पेट में दर्द हो रहा हो तो आप पेट दर्द में राहत के लिए एक बोतल में गर्म पानी भरें और एक तौलिए में लपेट कर उसे पेट पर रखें।
1: पेट की मालिश करें, अदरक की या कोई हर्बल चाय ले सकते हैं, कम नमक वाला आहार लें, पत्तेदार सब्जियां और फल खाएं जिसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है, तेज चलने वाली सैर करें। अगर इन सब से कोई मदद नहीं मिलती है और कोई अनियमितता दिखती है तो नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए। तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
1: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
0: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: सफाई ही आधा ईमान है,
2: यानी स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है।
1: और ये भी तय है, स्वच्छ रहकर ही हम तमाम बीमारियों को मात दे सकते हैं।
2: कैसे, कब कब हाथ धोने चाहिए, चलिए ये हम आपको बताते हैं।
1: खाना बनाने से पहले,
2: खाना खाने से पहले,
1: बच्चों को खाना खिलाने से पहले,
2: शौचालय के प्रयोग के बाद,
1: बच्चों के मल को साफ करने के बाद,
2: बाहर से आने के बाद,
1: पशु को छूने और उनके मलमूत्र को साफ करने के बाद,
2: खांसने और छींकने के बाद साबुन और साफ पानी से अपने हाथों को धोएं और हर बार हाथों को कम से कम 40 सेकंड तक धोएं।
1: हमारा भविष्य हाथों में है,
2: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा
1: जनहित में जारी।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नवजात शिशु, लड़की हो या लड़का, उसकी एक समान देखभाल करें।
3: नवजात लड़की या लड़के में खतरे के लक्षण दिखते ही उसे बिना समय गवाए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या SNCU में ले जाएं।
2: एक वर्ष तक के सभी नवजात शिशु को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो तो सरकारी अस्पताल में उपचार, दवाएं, सभी जांचें तथा जरूरत पड़ने पर रक्त, ये सभी सेवाएं निःशुल्क दी जाती हैं।
3: और 102 एम्बुलेंस सेवा घर से अस्पताल और अस्पताल से वापस घर तक निःशुल्क पहुंचाएगी।
2: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
2: शिशु की सही देखभाल से
3: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है।